सोचा था प्यार हम ना करेंगे. अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ब्लफ मास्टर, से हमने पेश किए हैं द मायती मुकेश जी की आवाज में. लता जी के साथ में मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है, दुनिया वालों से दूर, चलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर. उजाला है फिल्म का नाम.

आप सुन रहे थे दुनिया वालों से दूर, चलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है, इस दिल में क्या हुआ है, एक सपना सा जागा है। मोहम्मद रफी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी परवाना से आप सुनेंगे।

जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जागा है। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है कि ज़मीन वाले मायूस कर सकते हैं, ज़मीन वाले मायूस कर सकते हैं मगर आसमां वाला नहीं। चल मेरे दिल लहरा के चल।

चल मेरे दिल लहरा के चल, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी इशारा से, अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। फ्रॉम द मूवी परवरिश से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में मन्ना दे जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। मन्ना दे जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। कोई कोई आदमी दीवाना होता है, फ्रॉम द मूवी स्वीट हार्ट से हम पेश करेंगे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, और जो किसी के जाने के बाद होता है वो पछतावा होता है।

नमाइती मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कोई कोई आदमी दीवाना होता है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हम सफ़र है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हम सफ़र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। जो सिर्फ खुशी का मोल करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। फ्रॉम द मूवी मधुमती से आप सुनेंगे

जो सिर्फ किसी का मालिक यानी जो सिर्फ खुशी का मालिक रे वो दोस्त नहीं सौदागर है। नमाइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी मधु मालती। जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी में यानी जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी की आंखों में आंसू आपके लिए।

द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी सोता यानी सोसाइटी से, दिल मेरे तू अकेला था तू अकेला है। मुस्कुराहटे झूठी भी हुआ करती है जनाब, मुस्कुराहटे भी झूठी हुआ करती है जनाब, इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। मोहम्मद रफ़ी आपको सुनाने वाले हैं ओ मेरे शाह हुआ।

अभी आप सुन रहे थे ओ मेरे शाह खुबा ओ मेरी जाने जनाना, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। जी हाँ सुनने वालों, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस 55 से आप सुनेंगे, और गीत का बोल है जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। मोहम्मद रफ़ी के साथ में गीता दत्त आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अब ही आप सुन रहे थे मोहम्मद यानी मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त की आवाज़ में जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, फ्रॉम द मूवी मिस्टर एंड मिसेस 55। दिल की आवाज़ भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नज़रों की तरफ देख जमाने पे ना जा। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं और मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये है जो लोग दिल से फिक्र करते हैं वो सुबह से जाहिर नहीं करते।

अभी आप सुन रहे थे दिल की आवाज भी सुन मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नजरों के तरफ देख जमाने पे ना जा। फ्रॉम द मूवी हमसाया से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। जिंदगी में उस इंसान को मत खोना, जिंदगी में उस इंसान को मत खोना जो गुस्सा करके फिर खुद तुम्हारे पास आए। जिक्र होता है जब कयामत का, मोहम्मद रफी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों। फ्रॉम द मूवी माई लव से आप सुनेंगे, क्षमा करना सुनने वालों, मोहम्मद रफी जी नहीं बल्कि मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं। द माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

दमाईती मुकेश जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे, जिक्र होता है जब कयामत का, फ्रॉम द मूवी माई लॉफ से हमने पेश किए हैं। हमारी नीयत की पैमाइश इस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमें कुछ नहीं दे सकता। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। कन्यादान है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं।

मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी जी आपको सुना रहे थे फ्रॉम द मूवी कन्यादान से वो तेरे प्यार का गम। फ्रॉम द मूवी माई लव से आप सुनेंगे द माइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

दमाईती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे वो तेरे प्यार का गम, माई लव है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। ना आदमी का कोई भरोसा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी आदमी।

0: करते।
1: अभी आप सुन रहे थे ना आदमी का कोई भरोसा, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी आदमी से हमने पेश किए हैं, परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में बदल जाती है। कोई सोने के दिल वाला, कोई चांदी के दिल वाला, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी माया से हम पेश करते हैं।

सुन रहे थे कोई सोने के दिल वाला कोई चांदी के दिल वाला, शीशे का है मतवाले मेरा दिल, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा, ये जिंदगी है यार, यहाँ तारीफें भी होंगी और जलील भी किया जाएगा। मुकेश आपको सुनाने वाले हैं और विश्वास है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते चांदी की दीवार न तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया।

अभी आप सुन रहे थे चांद की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। ये वन ऑफ माय पापा'स फेवरेट सॉन्ग थे और ये हमेशा मुझे याद रहेगा। फ्रॉम द मूवी विश्वास से हमने पेश किए हैं द माइटी, मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे। मिट्टी का मटका और रिश्ते की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। गलत होकर खुद को सही साबित करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, प्रोफेसर है फिल्म का नाम और गीत का बोल है ए गुलबदन। ये गीत हम पेश करते हैं शर्ली जी के वास्ते, जबकि शर्ली जी प्रोग्राम को भी सुन रही है, तो शर्ली ये स्पेशली आपके लिए है।

प्रोफेसर है फिल्म का नाम और मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे ए गुलबदन। और ये सॉन्ग हमने पेश किया है स्पेशली शर्ली जी के वास्ते, जबकि शर्ली जी प्रोग्राम को भी सुन रही है। रिश्ते और रास्ते तब ख़त्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। एक हसरत थी कि आंचल का मुझे प्यार मिले। दमाईती मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं, चलिए मिलकर सुनते हैं।

0: माइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार।
1: आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए हम पेश कर रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, क्या ख्याल है? आप सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ, हो सकता है आप इससे लुत्फ उठा रहे होंगे।

जी फिल्म आमने सामने में से निकाले हैं। जी हाँ, आमने सामने में से निकाले हैं। निकिता सैफ ने सस्तक का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में कल्याण जी आनंद जी के साज पर हमने पेश किए। क्या ख्याल है, आप भी हैं मैं भी हूँ, एवरग्रीन किशोर कुमार इस तरह से।

एवरग्रीन किशोर कुमार की आवाज में आपको सुनाया गया क्यों दिल है तुम पे दीवाना। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, वो एक लाइफ और है मेरे पास, तो ये दर्शन इनका अलका याग्निक जी का, बस ये प्यारा लाइफ सुनिए इस तरह से आ रहा है।

ये लाइव रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाए फॉन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम में तेजसत एन का अलका याग्निक जी का वर्ल्ड फोरम थिएटर है। उन दिनों कांग्रेस खबाऊ नाम था। आप चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, तो क्या ख्याल है, ये फिल्म आपने अवश्य देखे होंगे। कौन नहीं देखा हुआ ये फिल्म, हरियाली और रास्ता 1962 शंकर जय किशन के साज पर।

हरियाली और रास्ता, ये शानदार गीत आपको सुनाए हैं। टाइटल सॉन्ग पेश किया गया ओफरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो निकेतन ट्विन संस्थ का ये फिल्म है शंकर जयकिशन के साथ पर लता जी और मुकेश जी मिल के आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। जी हाँ, ये रोमांटिक सॉन्ग, क्या ख्याल है?

रोका कई बार मेरे दिल के अपने दिल की पसंद को, और ये शानदार गीत चला फोन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। या क्या बात है, ओपन एयर के साज पर रफ़ी साहब और आशा जी ने कितनी फाइव तक होनी से 65 का ये गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और है ये

ये हवा ये मस्ताना मौसम रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया ये शानदार गीत। चलिए एक गीत हम और प्लेयर में रखे हैं, क्या ख्याल? हाँ, इस तरह से सुमन कल्याणपुर है।

हाँ लता जी आपको सुनाए हैं, जी नहीं सॉरी सुमन कल्याणपुर, सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए हैं चित्रगुप्त के साज पर निगतिन 25 तक का ये गीत। चलिए हम आपको सुनाते हैं क्या ख्याल है ये।

लाल छड़ी मैदान खड़ी फिल्म जानवर निकिती फाइव इन सस्तक शंकर जय किशन के साज पर है। तो लीजिए अब क्या खला ख्याल है अगर जमाएं ये चला दूं आपके लिए, आप भी हैं और मैं भी हूँ।

दिल पुकारे आरे आरे लता जी और रफ़ी साहब एस दे बर्मन के साज पर फिल्म जुअल तीस में से निकाल कर हम पेश किए आप सभी श्रोताओं के लिए। अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, एक बार फिर देखते हैं लता जी है।

वाह शाबाश, क्या बात है। लता जी की आवाज़ में हम पेश किए फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में शकील बदायूं की लिखी हुई गीत लता जी की आवाज़ में फिल्म आदमी में से निकाल कर नौशाद अली के साज पर। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, ये भी एक लता जी का गीत है और साथ दे रही लता जी और मुकेश मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल रहे हैं। ये प्यारा गीत सुन लीजिएगा मुकेश जी और लता जी।

ये किसने गीत छेड़ा और किसने किसकी जुल्फ बिखरी। जी हाँ, लता जी और मुकेश जी मिल के आपको सुनाए हैं फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें में से निकाल कर हमने पेश किए। चलिए, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, बहुत आप पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से।

ये ग्रेट। फिल्म सुर में से निकाल कर महालक्ष्मी ने आपको सुनाए द्रमर, तो पीट पाट कर द्रम रख दिया। बहरहाल फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका स्वागत है। फिल्म सुर में से निकाले जैसे मैंने कहा और हमने पेश की। चलिए अगला गीत। ठहर जाओ अगर आपको कहीं जाना है थोड़ी देर रुक जाओ, हाँ थोड़ी देर रुक जाना।

थोड़ा सा ठहरो, लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत फिल्म फिक्टोरिया तूनो द्री में से निकाल कर हमने पेश किए है ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और ये है एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी आरती बर्मन के साज पर। फिल्म तो आपने अवश्य देखे होंगे, फिल्म सीता और गीता निगतिन तुई जी मित 1972 का ये गीत है, 72 का ये फिल्म है और रमेश सिप्पी और जी पी सिप्पी बनाने वाले इस फिल्म का। रमेश सिप्पी जी पी सिप्पी ये दोनों सिप्पी जो है ये दोनों फिल्म शोले के बनाने वाले हैं और साथ मिलकर क्या नाम है सलमान खान का पिता का सलीम खान, सलीम खान और जी पी सिप्पी ने मिलकर ये फिल्म बनाए हैं फिल्म सीता और गीता। हम इसे निकाल कर ये गीत हम आपको सुना रहे हैं।

अच्छा जी, ओ किशोर कुमार जी, फिल्म सीता गीता में से निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, ये गीत रफ़ी साहब का ये गीत है, बहुत पुराना गीत है, निकिति फिरन शस्त्र का। ये गीत को लेकर कितने बैठक गाना में भी गाए हैं, लेकिन ये बैठक गाना निकाले कहाँ से? फिल्म जी हाँ, फिल्म सजनी से भैले मुलाकात, फिल्म का नाम है सजना से भैले मुलाकात, फिल्म का नाम है सजना से भैले मुलाकात। रवि साहब आपको सुना रहे हैं निकिति फिरन शस्त्र का ये गीत, सुन लीजिएगा।

रफी साहब की आवाज में आपको सुनाया गया है ये गीत, जब से दिखली सूरतिया तोहार गोरिया। जैसे मैंने कहा निकती फिरें से अशक का गीत है, फिल्म है सजना से भैले मिलनवा, उसी फिल्म में से निकाल कर हम आपको सुनाए हैं। तो क्या ख्याल है अगर हम ये चलाएं आपके लिए कि लोग तो कहते हैं लेकिन पता नहीं निर्णय आपका क्या है, दिल उसे ही देना चाहिए जो आपके लिए जान दे, पता नहीं सुनते हैं।

उदित नारायण जी आपको सुनाए चांद की चांदनी गुलाबों की कली मेरे लिए तुझे रब ने बनाया है। हमने बहुत कोशिश की ढूंढने के लिए कौन सा फिल्म कहा या नॉन फिल्म का होगा मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो अगर मुझसे बता देते तो बहुत अच्छा होता। हमने बहुत ढूंढे नहीं मिला और शायद सुनने वालों श्रोताओं को भी अच्छा लगे। ये फिल्म का नाम कौन सी फिल्म का ये गीत है, चलिए गीत हम आपको सुनाते हैं। चलिए जी हाँ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत है।

रफी साहब आपको सुनाए शमा जले या न जले। www.pinfaun.fm.nl पर आप चून है जो लोग चून की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते हुए चलिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत इस तरह से।

दीवाने को प्यार से देखो, प्यार से पूछो। रफी साहब ने तो छेड़ दी। जी हाँ, प्रेमिका को छेड़ दी तो क्या मुकेश जी ये कह रहा है, अगर आपने प्रेमिका को छेड़ दी तो चलो उनकी तारीफ कर देते हैं हम। दर्पण को जे देखा मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ

0: दर्पण को देखा जब तूने किया सिंगार, बार बार किया सिंगार। मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत। इस तरह से फिल्म उपासना में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।
1: प्रिय भाई बहनों, जब हम हिम्मत करते हैं तो ताकत बढ़ती है, जब हम जुड़े होते हैं तो एकता बढ़ती है, और जब हम स्नेह करते हैं तो प्यार बढ़ता है, और जब हम देते हैं तो

भाई बहनों, आपका अच्छा व्यवहार आपके रिश्ते को निर्धारित करता है। यदि दुनिया में कोई वास्तविक चुंबक है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है, तो वह आपका प्यार और आपका व्यवहार है। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये आपकी संपत्ति है या धन है। नहीं दोस्तों, नहीं, ये आपकी संपत्ति या कुछ और नहीं है, ये सिर्फ आपका प्यार और आपका व्यवहार है। आपका व्यवहार है, ये आप अपनी जीवन में लागू कीजिए। मित्रों, लागू कीजिए।

दोस्तों, गलतियां, असफलताएं, अपमान, निराशा और अस्वीकृतियां प्रगति वृद्धि का हिस्सा है। इन पांच चीजों का सामना किए बिना किसी ने कभी भी कुछ भी मूल्यवान हासिल नहीं किया है। मित्रों, मुझे क्षमा करना, तो क्या आप कोई विशेष इंसान हो जो ये पांच चीजों का सामना किए बिना सब कुछ हासिल कर लेंगे? नहीं, नहीं, आपको भी इस चक्की में जाना पड़ेगा। और जब आप इससे बाहर निकलते हैं, तब आप एक वास्तविक अनुभवी व्यक्ति होते हैं। मित्रों, ये याद रखना, ये हमेशा याद रखना।

भाई बहनों, खूबसूरत दिन तब आता है जब आप जागते हैं और पाते हैं कि जीवन अभी भी आपकी दुनिया का रंग है, क्योंकि उन लोगों की वजह से जो वास्तव में आपकी परवाह करते हैं और आपको कभी नहीं भूलते हैं। और इसका अनुभव केवल तभी कर सकते हैं जब आप वास्तव में दूसरों के प्रति मधुर और दयालु हो। यह आप पर अच्छा लगेगा, ये आप पर अच्छा लगेगा। इसलिए बिना किसी घमंड के हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें मित्रों, बिना घमंड के।

भैया, जिसकी घर के दिए में तेल नहीं, वहां जोत जलाऊं मैं कैसे? मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं।

श्री राम जय जय हनुमान, पवन पुत्र हनुमान जी की जय हो। आकाशवाणी के सुनने वाले, आकाशवाणी के प्यारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों, भाई बहनों, आप सबको हार्दिक से स्वागत है। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। यहाँ से आपके लिए स्पेशल भजन कार्यक्रम आरंभ हो चुकी है। स्वीकार कीजिए आपकी सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।

अवश्य। ओम नमो भगवते सूर्याय नमो नमः। प्रभात के किरणों में छिपा है आशीर्वाद, प्रभात के किरणों में छिपा है आशीर्वाद। सूर्यदेव देते हैं हर दिन का प्रसाद, सूर्यदेव देते हैं हर दिन का प्रसाद। जो उठकर उनका स्मरण करे, जो उठकर उनका स्मरण करे, उनसे जीवन में सफलता के फल मिलते हैं और खिलते हैं। हम सूर्य को जल नहीं दे रहे हैं, जब हम उसको सूर्य के अर्घ अर्पण करते हैं तो ये मत समझना कि हम सूर्यदेव के जल समर्पण करते हैं, बल्कि ये होता है कि हम अपने आप को रोशनी कर रहे हैं।

अर्पण करने के लिए हम तो सुबह सुबह जल्दी से बिस्तर से निकलना पड़ता है, अपना स्नान करना पड़ता है, तो हम जाके सूर्य को अर्घ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सुबह जल्दी उठना, ये तो प्रथम काम जो है पूरा हो जाता है।

सुंदर भजन सूर्य नारायण सूर्यदेव के प्रथम आपके लिए पेश हो रहा है, और आगे सुनते हैं सूर्य नारायण जी की सुंदर सा भजन। मोह द सेगनिंगन फान सूर्य नारायण आल्टाइड ऑप ओंस मेट यू एन यू गेसिन सैन अन गेसिगन दाग टू गेवेंस। Een heel goeiemorgen aan ieder.

अवश्य सूर्य नारायण से अहम है, आप है, ये पूरा सृष्टि है, उनके किरणों से, उनकी ज्योति से, उनकी गर्मी से हम सब हैं।

प्रकाश के देवता, प्रकाश के देवता सूर्य नारायण जी। सूर्य नारायण जी की कृपा हम सब पर, आप सब पर और आपके परिवार का जीवन, हम सब के जीवन सदैव प्रकाशित रहे।

दस मिनट गुजर गया है, आठ बजकर दस मिनट गुजर गया है, आठ बजकर बुधवार के सुबह के कार्यक्रम से हम जुड़े हैं। आज 13 तारीख हो चला है, 13 तारीख मई हो चला है। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके लिए यहाँ से मैं 2-4 भजन और जारी करूँगी, चलाऊँगी, उसके बाद आपके लिए स्विच करूँगी यहाँ पर गीतों में।

अवश्य अवश्य, यही भी मैं चाहती हूँ कि सबका मंगल होए, पर अपने ही अपन कर्म के अनुसार हमको यहाँ पर अपना अपना कर्म निभाना पड़ता है। पर एक दूसरे के लिए दुआ प्रार्थना करना ये भी बहुत बढ़िया काम है। ओम सूर्य देवाय नमः। Vergeet nooit de drie krachtige instrumenten die je tot je beschikking hebt. En dat zijn liefde, gebed en vergeving. Mogen de zegening van Surya Narayan, mogen de zegening van Surya Narayan altijd op jou, op ons en op je hele gezin rusten. Vergeet nooit de drie krachtige instrumenten die je tot je beschikking hebt. En dat zijn wat ik al eerder zei. Liefde, gebed en vergeving. Goedemorgen, Sri Surya Narayan Namo Namo, Shuprabhat, Ek Shubdin, Ham Sabhi Ke Liye. यहाँ तक था आपके लिए भजन माला कार्यक्रम जिसमें हम गोटा लगाए हैं। तक है भजन कार्यक्रम जिसमें हम गोटा लगाए हैं, और देने सुनने के लिए इस वक्त के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरे नमस्कार इस वक्त के लिए। आपके लिए जिनका जन्मदिन आज है उनके लिए

ये दविंदर सिंह जी की आवाज में है कि जियो हजारों साल, जियो हजारों साल तुम माँ के दुलारे, दविंदर सिंह जीवनाथ जी की आवाज में।

हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। राजेश शिवनंदन जी को यहाँ आकाश में लाया गया है हम सभी के वास्ते, जो हम यहाँ से सुने श्रवण की है। मेरे प्यारे सुनने वालों, हम देखे कुछ कुछ और होना था, कुछ और हो गया है। खैर, होता है, होता है, होता है, होता ही हो जाता है। जिससे हम नहीं सोचते वो भी हो जाता है, पर उसकी कोई मायने नहीं रखता। चल चल रे मुसाफिर शर्विन, शर्विन के आवाज़ में बैठक गाना फॉल्यूम इन से आपके लिए यहाँ से अभी चलाया जाएगा। हंग हैथ खदू आन द कपस्टॉक, हंग हैथ खदू आन द कपस्टॉक, फेह ये सोरखन आन द मत, मुतन एन हास्तन हुफन हीर नीत। लुस्तर लुस्तर नार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो एन खनीत मैंने लिफो मैंसम।

बेमिसाल बेमिसाल लाजवाब पर जिस शिवनंदन जी की आवाज़ में, और कहते हैं कि वट यू सेक्ट बेन योर सेल्फ, वट यू सेक्ट बेन योर सेल्फ, वट यू फिंड गाट ओवर योर, वट यू गेफ्ट क्रेग यू टेरुग, डेल यू लिफ्ड एंड वर्ट्रोव.

0: जी हाँ प्यारे सुनने वालों, जिसका इंतज़ार था वो हाजिर हो गए, वो आ गया है श्री पंडित राजकुमार महातम जी को हम यहाँ से हार्दिक से स्वागत कहती हूँ। पंडित जी आप आकाश में हैं, आप को स्वागत कहती हूँ।
1: नमस्कार, धन्यवाद जी। हरिओम महादेवम नारायण परम ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायणो परो देवा सर्वनारायण सदाम ओम नीलम भुजिश्यामल कोमलंगम सीता समारोपित्वाम भागम पाड़ो महासायिक चारुचापम नमामि राम रघुवंश नाथम। हरि ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमाय स्वाय च मोक्षोक्षरूप ईश्वर को नमस्कार। संसार सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। कल्याण करने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार। और अत्यंत कल्याण स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले जहाँ तक हमारा आवाज पहुंचे आप सभी को जागृत आयुग मेरा प्रणाम नमस्कार या राम राम सीताराम पहुंचे। खास करके रेडियो फान के जो मालिक हैं मैं उनके भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ जो समय प्रदान किया है धर प्रचार करने के लिए। हम वहाँ अभी कितने आनंद ले रहे थे जहाँ प्रसन्नता जी ने रेडियो फान को माध्यम से बाप कितने अच्छे ढंग सेवा कर रहे थे उनको मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ। आकाशवाणी कृष्ण वाले हर बुध के तरह आज भी मैं आपसे बीच उपस्थित हूँ। पता ना है मालूम नहीं है कितने बुध हमारे बाप के जीवन व्यतीत होगा, लेकिन जो समय मिला है परमात्मा जो समय दिया है उस समय से हमें उसको अच्छा काम में प्रयोग करना। तो आकाशवाणी कृष्ण वालो कुछ जाकर के माया के बारे में तत्व रामायण के माध्यम से कुछ माया के बारे में कहूंगा आप सबके बीच में। हम आप भी जानते हैं आकाशवाणी के सुनने वाले जगत का संबंध मनुष्य को मीठा लगता है ना, परंतु अन्य काल में वो काम आता नहीं। स्त्री

आ जाता नहीं, सबको अकेले ही जाना पड़ता है। अरे आकाशवाणी के सुनने वाले ही मानो, जिसको अपना ही स्वरूप माना और जीवन भर जिसका खूब यत्न किया, वो देह भी साथ जाती नहीं और पीछे तो छोड़ गए, देह को भी घर से बाहर निकालने की सभी शीघ्र यानी सब जल्दी करते हैं, जितना जल्दी हो इनके निकालो अंत्येष्टिक्रिया किया जाए, जितना जल्दी हो सके ना। फिर भी मनुष्य समझता नहीं समझ जीवन में, और मेरे की हाय हाय से ऊंचा उठता नहीं, ये मेरा स्त्री, ये मेरा पुत्र, ये मेरा धन संपत्ति, ये मेरा घर, ये मेरा मनुष्य का जीवन इस रीति से मेरा मेरा करने में ही जाता है। संस्कृत में मेरा को मैं कहते, मनुष्य का जीवन यानी बकरे की तरह मैं से करने से ही बीतता है, और मेरी बुद्धि तत्व का निश्चय नहीं कर पा रही है। जगत के पदार्थ बुद्धि को बिगाड़ रहे हैं, जिसके यानी जिसके मन बुद्धि शुद्ध हो जाते हैं उसे वासना त्रास देती नहीं। इसलिए मैंने राज वैभव और कुटुंब आदि का त्याग करने का विचार किया है। ये कौन प्रभु राम किससे कहते हैं? प्रभु राम गुरु वशिष्ठ के पास बैठे ना, वहां स्पर्श करते हैं। मुझे शोक रहित होना है, मुझे परमानंद प्राप्त करना है। ये परमानंद किसमें है ये मुझे बताओ। जो इस जगत में आता है उसे व्यवहार तो करना ही पड़ता है, व्यवहार में विष मद भी आती है, और संसार का कोई भी व्यवहार राग दोष अथवा सुख दुख से रहित नहीं होता। संसार का व्यवहार करने में दुख भी प्राप्त ना हो और व्यवहार में भी अर्चना ना आवे, ऐसे उपाय मुझको बतलाओ। कौन? प्रभु राम जा करके अपने गुरु वशिष्ठ से पूछते, परस करते, वहां सीखते है ना, ऐसे किस उपाय का सब तक शीघ्र ना हुआ। प्रभु राम कहते ऐसे किसी उपाय का अब तक शोधन ना हुआ, तो उस उपाय विचार में करूं, यदि वो उपाय मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मैं समझ व्यवहार छोड़ दूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा। श्री रामचंद्र जी के ऐसे ज्ञान पूर्ण वचन सुनकर वहां बैठे हुए सभी व्यक्ति क्या यानी वहां पर जितने लोग बैठे थे, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी और अन्य ब्रह्म ज्ञानी को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा अमृत तत्व ये किशोर कैसे बोल रहा है, कैसे ज्ञान धारण कर रखा है। बृहस्पति भी जैसा बोल नहीं सकती ऐसे वचन ये कुमार बोलता है, सुनने वालों में वैराग्य जागृत करें, ऐसे इसका वचन है। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, सबको यतन आनंद हुआ, बात सुन कर करके सबके आनंद प्राप्त हुए। वेदांत में साधन चतुष्ट की बहुत महिमा है, विवेक वैराग्य और इन चारों को साधन चतुष्ट कहा गया है। अब वहां पर जाके गुरु अशित ज्ञान देते हैं सार असर को, नित्य अनित्य वस्तु को परखने वाले बोध को विवेक कहते हैं, संसार के विष में अनाशक्ति को वैराग्य कहते हैं, समदम उपरीत तीक्षण श्रद्धा और समाधान कहलाती है, मोक्ष के यानी मोक्ष के लिए को कहते हैं, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है उस स्थान कहा गया है, जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है उसे प्रथम इन साधनों में स्थिर होना आवश्यक है। ये सर्व साधन राम जी में स्पष्ट रूप से
देखा जाए।

कहता है। विश्वामित्र जी ने कहा, विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, हे राम, जो जानना योग है वो सब कुछ तुम जान चुके हो, अब तुम्हारे लिए विशेष कुछ जानना बाकी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि निर्मल और स्वच्छ है, केवल उसे तनिक शुद्ध करने की आवश्यकता है और थोड़े स्थिर करने की आवश्यकता है। वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी भी तुम्हारे जैसा विचार उदित हो गया था और ऋषि विश्वामित्र जी राम जी को सुखदेव जी के कथा सुनाते हैं। सुखदेव जी वेद व्यास के पुत्र थे, मन में इस संसार की स्थिति पर वो अत्यंत विचार करने लगा। विचार करते करते करते करते सुखदेव जी में विवेक जागृत हो गया। अविवेक से बहुत विचार करते करते अधिक समय पश्चात उसका सत्य को प्राप्त हुआ। सुखदेव जी को संसार मिथ्या लगा, संसार के प्रति उसमें वैराग्य जागा। जिस प्रकार परम सत्य प्राप्त होने से तुम्हारे अंदर भी आज वैराग्य जागा हुआ है, जिस प्रकार ये परम सत्य तुमने अपना आप ही प्राप्त किया है, परंतु इसमें जिस प्रकार तुम्हारे विश्वास को स्थित नहीं हो रही है, उसी प्रकार सुखदेव जी को भी विश्वास नहीं आया था, इसमें उनके बुद्धि स्थिर होती नहीं थी। तब एकांत में ध्यान करते हुए अपने पिता वेदव्यास सुखदेव जी ने पूछा, हे मुनि, ये संसार रूपी प्रचंड किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, किसके इसे उत्पन्न किया है और किसमें ये शांत होता है? प्रकाश होने के सुनने वाले गुरु वशी जा करके प्रभु राम से कहेंगे, देखो सुखदेव जी जो हैं उनके पिता वेद व्यास है वो सब कुछ जाने, लेकिन कुछ प्रश्न अपने पिता जो पूछते हैं पिता बताते हैं, लेकिन सुखदेव मुनि जो अपने पिता की बात पर उतना विश्वास नहीं है, तब वही जा करके कौन जो है वेद व्यास जा करके सुखदेव मुनि के किसके पठाते, किसके पास? राजा जनक के पास सीखने के लिए। अब ये कथा कौन सुनाते हैं? ये कथा गुरु यानी गुरु वशिष्ठ प्रभु राम को सुनाते हैं। कथा बहुत बड़े आकाशवाणी के सुने, लेकिन यानी छोटे माप के संकेत करते हैं। तो आकाशवाणी के सुनने वाले सुखदेव मुनि कहाँ पर जाते हैं? जाते हैं राजा जनक के पास। राजा जनक के पास गए, वहां पर द्वारपाल ने उसको रोक लिया भीतर जाने के लिए, उन्हें जाने नहीं दिया। तो वहां पर जाकर के द्वारपाल ने राजा जनक से कहा, देखो सुखदेव मुनि आए हैं। तो राजा जनक के तो पता मालूम हो गया, कहे उनके बाहर उनके भीतर आने नहीं दो, वहां पर ठहरने दो। 7 दिन तक वहां पर धूप बारिश में इंतजार किया, कौन? सुखदेव मुनि। तब उसके पश्चात सुखदेव मुनि गए राजा जनक के पास, उनको चरणों में प्रणाम किया, वहां पर परीक्षा लेते हैं, जिसे टूटी भाषा में कहते हैं प्रूफ। राजा जनक ने कहा सुखदेव मुनि को से और अपने द्वारपाल से कहा, सुखदेव मुनि को ले जाओ जहां पर लोग जाकर के वहां पर संगीत गाते नाचते हैं, वहां पर जाकर सुखदेव मुनि को जाकर के वहां पर बैठाया गया। वहां पर जाकर के अनेकों स्त्रियां नाचते हैं। सुखदेव मुनि जाकर के वहां पर बैठ करके देखते हैं कि ये टस से मस नहीं हुआ। वहां पर एक स्त्री आकर के सुखदेव मुनि से कहा, आप तो मेरे के नाच को बहुत ध्यान समर्पित को बहुत ध्यान से देखते थे। तो सुखदेव मुनि ने क्या कहा आकाशवाणी के सुनल? सुखदेव मुनि ने कहा, मैंने आपका भीतर जाने शरीर दो प्रकार स्थूल सूक्ष्म और कारण। वहां पर सुखदेव मुनि ने कहा, मैं आपके कारण शरीर देखना चाहते थे। कहने के तात जो वस्तु हम देखें
कौन भाव से हम देखते हैं। मान लिया जाए, एक उपमा देते हैं, जैसे पुष्प कमल के फूल खिला है, एक नौजवान उधर से गुजरते हैं, नौजवान सोचे कमल के फूल मिल जाए जिससे प्यार करता उन्हें दूंगा। एक बूढ़ा बाबा हबड़ा हो है, बूढ़ा बाबा सोचते ही कमल के फूल मिल जाए मेरे को तो अपने पोता के दूंगा। एक भक्त हबड़ा होते भक्त गुजरते भक्त सोचते कमल के फूल मेरे को मिल जाए तो जा करके भोलेनाथ शंकर बाबा के चरण में अर्पण करूंगा। फूल एक ही तरह है लेकिन उनके कई रूप से हम देखते हैं। इसी प्रकार राजा कौन जा करके सुखदेव मुनि ने कहा, मैं आपके कारण से देखना चाहते थे। उसके पश्चात आकाशवाणी के सुनने वालों सुखदेव मुनि के कहां पर ले जाते हैं, जा करके राजा जनक के पास। राजा जनक ने कहा ठीक है लेकिन हमारा धर्म आदान प्रदान होना चाहिए, लेन देन होना चाहिए, अपने गुरु से कुछ ना हमें जो कुछ सीखे उनको हमें कुछ दक्षिणा देना है। तो वहां पर जा करके राजा जनक ने कहा कि नहीं, राजा जनक कहते सुखदेव मुनि से मैं ऐसा वस्तु दो जो हम ना प्रयोग कर सके, काम में ना ला सके। तो वहां पर जा करके सुखदेव मुनि दौड़े, वहां पर पत्थर पकड़े, पत्थर से आवाज निकलते हैं कि पत्थर से मेरा मकान बनते हैं, माटी पकड़ते पृथ्वी को, वहां से आवाज निकलते हैं कि मेरे सने को पौधा निकलते हैं। अब वहां पर सुखदेव मुनि सोचे कौन ऐसा वस्तु मैं दूंगा जिन्हें हम आप ना प्रयोग कर सके। तो सुखदेव मुनि कहां पर जाते हैं, जो हम आप थाली में भोजन कर करके एकत्रित कर देते हैं ना, तो उसको पकड़ते हैं। वहां से आवाज निकलते देखो मानो बहुत कठिन है, जब अच्छी थे ना तो भोजन में सोना के थाली में भोजन करते लेकिन मेरे को फेंक दिया, वहां से केरा उत्पन्न होते हैं। आकाशवाणी के सुनने वाले सुखदेव मुनि सोचते मैं कैसा वस्तु दूं कि जिन्हें हम ना प्रयोग कर सकते, तो उन्हें ज्ञान हुआ ये शरीर जो है ना, ये शरीर जिसे हम बोलते हैं। तो वहां पर सुखदेव मुनि राजा जनक ने कहा इस शरीर जो है, तो वहां पर जाग राजा जनक ने कहा ठीक है आप उत्तीर्ण हो गए। वहां से आशीर्वाद देते कहने के तहत आकाशवाणी के सुनने वालों इस शरीर जो है केतु काम के लिए नहीं। तो ज्यादा न कहते हुए आप सभी को मैं भूरी धन्यवाद दे रहा हूँ और यह वाणी द्वारा अपना परिचय मैं विराम करने जा रहा हूँ। हरि ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामे, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् भाग् भरे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।

जहाँ से हमने श्रवण की है श्री पंडित राजकुमार महात्म जी की मुखारविंद से सुंदर सा कथा, हम सब कितने खुश है कि आज भी कथा सुनने के मिला है और वो भी हमारे प्रिय पंडित जी श्री पंडित राजकुमार महात्म जी को भी दिल से धन्यवाद किया जाता है जो अपना मूल्य वक्त निकाल कर और सेवा कर रहे हैं। आप सभी की ओर से श्री पंडित राजकुमार महात्म जी को धन्यवाद किया जाता है। धन्यवाद जी।

It's soul Suriname, Mr. All Right, say. Oh, mere dil ke chain. तस्वीर बनाता हूँ और नहीं बनता है, तस्वीर बनाता हूँ, राजेश शिवनंदन जी की आवाज़ में।

सन दीप बदलू के आवाज़ में सुने हमने कि भीगा भीगा प्यार का समा, दुख हो या सुख मैन एलिफमेंस, दुख हो या सुख वो अपना ही सोचे है, जो भी है जीवन में सीखना है जीने के लिए, बीता कल बदल नहीं सकते, बीता कल बदल नहीं सकते और आने वाला पता नहीं चलता कि कहाँ पे कैसे होगा, पर जो भी होगा अच्छा ही होगा, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले।

नदीम खान जी की आवाज़ में हमने सुने कि आंखों आंखों में हो गए आप और मैं दीवाने। बात तो सही है ना, आप भी दीवाने मैं भी दीवानी, तो दो दीवाने मिलके। खुद हेयर स्टाइल ना है स्पोर्टन, खुद हेयर स्टाइल ना है स्पोर्टन, इस सेर बलांगरेक स्टर्कर वर्डन बकेंट बाय अ खुद हेयर स्टाइल। एंड दैट इज नोडिग खुद स्लाप, वाटर, फूडिंग, रस्ट, लिख बवेगिंग एंड स्ट्रेचिंग। स्लाप, सॉर्ग दैट यू 7 टॉट 9 uur स्लाप। Voeding, eet eiwitten en koolhydraten, bijvoorbeeld kip, yoghurt, fruit, rijst. Water, drink voldoende water, minimaal 2 liter. Rust, neem voldoende rust, spieren groeien tijdens herstel. Bij voldoende rust, spieren groeien.

चिरीच कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। एक बार फिर से कहते हैं तमाम रेडियो फाउन के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरी नाम से सत श्री अकाल।

जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है। फिर से एक बार हमारा काम यही है, हमारी मोहब्बत भरी

और हम तुरंत इसी चून से और जा रहे हैं और कहां जा रहे हैं समाचार की ओर हम चलते हैं हमारी जनता। दोस्तों बात चीज बहुत गंभीर है सूरीनाम देश में और हमारे सूरीनाम देश में गंभीर के बांज किया जाए तो भैया वहां पर और क्या किया जाए, बारिश बहुत जोर तोर से आ रहा है, परमारी बहु बुड़ गया भैया, शहर सब बुड़ गया है और जनता हाय हाय चिल्ला है कि बचाओ बचाओ बचाओ। निकेरी के लोग भी बहुत बहुत इसमें और चिल्ला है भैया कि निकेरी के रास्ता बहुत खराब हो गए, टूट गए है। तो सिमोन के बोले है एक से एक मीडिया के सब सूखे हैं, बुलावे हैं और फिल्म बनावे हैं जगह जगह और दिखावे कि लांटी दे कुछ करे ना है और चारों बगल बुड़ल है भैया। निकेरी के जनता फिर से एक बार बोले है कि हमारा निकेरी के रास्ता सब बुड़ गए, अब मिलांस के भी चाहे चले के जब कुछ गड़बड़ी है तो आमस्तर यानी कि ब्रांतवेर के भी तूफान चाहे जाए के तो बोले हैगा ये रखेरिंग सिमोन कुछ ना करे है, अब बोले न संतोखी करके गए है, अब बोले ये भी कुछ ना करे है। तो निकेरी के जनता आप लोग इस रखेरिंग को बैठाए है तो इसका काम है आपके प्रॉब्लम अपलॉस करे के। अब चांद तो दुनिया पे ना भैया, अब चांद ना है बोलिए कि चांद बुराई से या चांद मर गए तो ऊपर से कस के बरखा बरसावे है, तो जाने है जब कुछ होत रहा तो चांद संतोखी करत रहा तब तो दुनिया बना है दोस्तों, तब ओकर स्किल रहा है। और आप लोग जाने निकेरी के जनता लोन एनडीपी का रखेरिंग के पूरा वोट देकर आज सिमोन के और रिसलान के प्रेसिडेंट बनाई से और आशा ही है करे रहा कि सब उस सब के प्रॉब्लम अपलॉस करेगा जो संतोखी ना कर पाए से। लेकिन अभी तक यहाँ के जनता निकेरी के जनता तफरीदा ना है भैया और का बोले है अने ये रखेरिंग के भी बोले है तुम भी कुछ ना करे है जैसे संतोखी ना कर ले रहा। तो हमारे जनता हमारे दोस्तों आप लोग को और आगे हम अपना प्रोग्राम को और लेकर चलते हैं और बताते हैं।

सिलस ढको लीले के, तो याने हम लोग बोले ला बोलचस्तो थे और अतिया के जबरजस्ती सबन बोलचस लीलाए रा भैया बड़ा सिलियान के औरत के। और बोले इस देश वे ई हफ्ता में नचनाल एगो ऑर्गेनाइजेड ड्रग्स बंद है जो नो के काबुल रहा अन लीलाए रा भैया से सो में फाल्स बलोफ्टन ओवर वर्क नार इट लैंड सेन खलोक में फॉलोन सेन फास्ट गहोदन दिस एक के ब्राजीलियन से बुलाए रहा दूसर की कि आओ यहां पे तो के मोई मोई हम काम हम देवावे बाकी ओके सेवन ड्रग्स बंद पकड़ के बंद कर ले रहा और जबरदस्ती ओके ड्रग्स बोलचस ओके लीलावत रहा भैया। और ब्राजीलियन से फेडरल पुलिस वर्त स्लाग ओवर गदवन कोकेन कैप्सुल्स इन द सिलिकन फॉर स्मगल ट्रांसपोर्ट नार यूरोपा। बोले तो के चाहेगा कोकेन के बोलचस लीले के और तो के चाहे ले जाए के यूरोपा में। तो यहां पे बताया गया है कि रेकनिस ऑपरेशन 6 तारीख मई के और फुरक करिसेगा साम इंटरनेशनल सामवर्क्स इन हेड से फेडरल पुलिस और रहेगा पर्नमान बिको इस सामवर्क में फेडरल पुलिस सरनाम से और जाए के औरतिया के बफरेट करी से भैया बफरेट कर दी से। और अक्षिया भैल है एच विशल भैल और बोले है दोनों देशों ने कर बारे में तब बोले बैतला लेखाल वेरक सौ से इनफरिक्तन कोरना द अनकोम से सिरिनाम सौ से एक्ट से ऑन फूर्ट जैसे छोड़िया औरतिया आयल है सरनाम में ओके सब डायरेक्ट ऑन फूर्ट कर लीजिएगा। और काबिल इंटरनेशनल ड्रग्स हैंडल खातिन और बताई गई हैगा बोले द पुलिसी फरमोट की औरतिया इन सेट सो खनाम द ड्रग्स मेल दैट वे वर्डन कैप्सुल्स में कोकेन एट लिखाम फॉर फूड मन एंड फॉर स्मगल फ्लक्टर ना यूरोपी से बस्टेमिंग। तो यूरोपा मुख्य पठावत रहा लीलाए लीलाए भैया और ओकर खसों थे इस ऋषि को रहा एकर बारे में जे लीलियो भैया जो पेट में दग गए कोकाइन त जैसे भैया गोदो बोक ब्रोको सीरी पाया हो जाए और तू मर जाइए भाई। और यहां बतावे है खसों थे सड़क के कर बारे में बोले है कि अरेस्ट ऋषि को रहा और बताया दुर्क्रिमिनल नेटवर्क इन द क्वेस्ट बार पर्सोनन रेक्रूटेरन मेट फॉल्स ऑफ ऑफ्टन और बोले हैगा फेल का तुरक के ना ब्राजीलिया मोखलक तमाकन और के फिर से पठा दी से ना हर बफ्राइडे से द डिप्लोमेटिक प्रोड्यूसर्स ऑफ कस्टार और मार फेल तुरक ना ब्राजीलिया मोखलक ते सेन फेडरल सिपाही जो हैगा ओके बोले हैगा इन्फॉर्मेर के इस फ्रीगेकेवो मोखलक फरदाखतन ऑफ आनहोडिंगन द साक इज ऑंडरसोक अब देखो टिप पकड़ा है भैया का बोले हैगा अन ड्रग्स बंदून की ना पकड़ा है तो जानो भैया उसर नाम है और विश्वास बहुत कम है कि सबर पकड़ पाए कि ना पकड़ पाए। भाई एक बात और है बड़ा तमाशा अरे जोन चकलज भाई ले नानी तुलन जाने तो अन का बोले है ओके ईशन ईशन भैया एनडीपी के अडमिरा ईशन फर्नसन ईशन फर्नसन भैया और का बोले रखेरें के आदमी रहा बाउटर्स के तहत पे तो अब ये का करी सी अब बहुत हो मुदक खेलत रहा नमी है यहाँ लिखल भैया हम ना बोली ला तो ये गए ले सुरिनाम के डीएसबी बैंक में भैया डीएसबी बैंक में गए ले और हुआ पे झगड़ा भैल है भैया जो हुआ झगड़ा भैल है डीएसबी बैंक में यहाँ बतावे है तो हुआ के बफेल किंग एक के बहरे निकाल दे इसे भैया ईशन फंडरसन के बहरे निकाल दे इसे वादी नमिया चाहे जहाँ जात रहा लड़क फड़त रहा। तो यहाँ बतावे फंडरसन जो रहा बोले आंटारिक मई के सब के बवाकर एक के जबरदस्ती उठाई के बहरे बिक दे इसे भाई बिक दे इसे का बोले हैगा डीएसबी से डीएसबी बैंक के ओमदाती लड़त रहा बतावे फंडरसन वेर तू door een bewaker uit de bank gezet op bolle nadat een discussie over kosten zou zijn geëscaleerd. De voormalige directeur van kabinet-president van Bouterse zou daarbij buiten op de rug en hoofd zijn gevallen. De van der Zanige Boulouademi, ja, lekker een baatje, bouw, lamba, chowra, hè, to ik heb het aanwezigen. बहरे बिक दे से अब बोले हैगा बांग बोले हैगा ते सिस्ट लेबोरेटरी एंड इमिनेंस कांटेक्ट दे हैवन अपक्रोमन मेरे बतरोकन क्लाइंट 81 यार के शेन फॉर द सन के सब बहरे बिक दे से मा ओ बतिया अपना भैया अब फंडर सन का करे बोले आ तोरी रोक बातो सन अंदर सन बोले तोरिया

दोन हुई गए, बोले तो लो हमें बहरे बिगले हैं। हाँ ऐसे चिजुआ ना है फांदर सान, बोले है। अब फांदर सान का करी से भैया, ई गईल है फिन से बंकवा में। हाँ यहाँ बताए गए है फांदर सान फिन गईल है बंकवा में भैया, और वहाँ पे गईल है ओझाई करे बंकवा में भाई। हाँ गईल है ओझाई करे बंकवा में। इस सब भैया हमारा देश के अपरे के बहुत महान बतावे है, बहुतस के रखेरें के, और ये रहा रखेरें के आदमी रहा भैया हुआ, और बतावे ईशन फांदर सान के। तभी का गईल है भैया, एगो विनती एगो ओझा के लेके गईल है, जेकर नाम है बासी रामोड मैकनेक के। सो मार के सवेरे लेके गईल है, और बोले है अन्वेषक मेरे फिलियाल डीएसबी बैंक के जो कोरोना स्ट्रांड में बा, हुआ लेके गईल भैया, और हुआ पे गईल है ओझाई करे। दत कबूत ना दत बिल दन फसेरमोनी ऑफ सोशल मीडिया श्रीनिवास मसाल वर्दर कदेल एंड फोर फील रिएक्सी सोरख द। तो अपि भैया मैकनेक जोन है रितुवेल बदूल ओम क्रा इंटेलेक्ट बस्कर्मिंग फान दर सान तरख तरूपन बैन ग्रोते फाल ऑफ ऑनगेलुक फॉराल बै एन बिगी मांग ऑफ उमा ब्लाइव द क्रा ऑफ द लोकासी अख्तर। दत इस फान दर सान ओवरकोमे तुन है ऑफ ग्रोफ एन हार्ट handen gewezen naar buiten werd geduwd en hard op de grond viel, stelt hij. De api bank met geile ojaikere bhaiya, bole geestelijke balans gaat die ritueeltje geil gij, bole van der san te herstellen, of bole hega om de geestelijke balans ter bhaiya, itra badka badka admiloon, joan regering ke admiraha, u geile bank met ojaikere nana, socho hamara des me ojai se chale ka, des ओझाई से कहां चले भैया। अब देखो और आगे हम जाए तो भैया राजेश रामदत्त भी हमारे प्रोग्राम में आकर जुट गया है। तो राजेश आपको हम बहुत स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में। भैया राजेश रामदत्त आ गया है, तो राजेश सुन काबल भैया तीनर भैया एगो तीनर सरना में नम ओम वेल हो गए है, एकदम ओम वेल हो गए है एगो तीनर। और ये कैसे ओम वेल भैया, एगो कुकू खाई से भाए। तो सुरीनाम में जइयो कुकू और जब खइयो तो जान लियो कौन कुकू हम खाइला। तो यहाँ बता ले एगो कुकू के नाम बा ओरियो कुकियस, बाकी यहाँ बतावे हैगा ओरियो कुकियस खाई से का दुई गो स्कूल के लड़कन खाई से नानी। और ओमवेल भाई लेगो 15 बरिस के और एगो 16 बरिस के 11 तारीख मई के बात है। तो भाई सब खाई से कुकू मां कुकुआ में कैसे ओमवेल भाई ले नेली रघुनंदन महावीर भी हम आपको स्वागत करते हैं। तो नेली ई दुई गो कुकुओ लड़कवन खाई से कैसे ओमवेल भाई ले मालूम परल है कि ई कुकुवन में डायरेक्ट में बना वल्ला भाई सरनाम में। अब कुकू भी दुर्यक्ष के बने लगा। अब कुकू वो खाए के लड़कन के अब हुआ डर है भैया। हिया बताए गए हैं बोले मैं दुर्यक्ष फरमेंग द ओरिया कुकीज ऑन द स्कूल इवन द फरकोपन एंड ऑफ तू तदीनन। तो कुकू में जब तू दुर्यक्ष बनाए के लड़कन के लिए तो बदूलें यही है ना कि लड़कों को इन से फरसलाफ होई अपन लड़कन के स्कूल के लड़कन के जो हमारा देश के भविष्य है जो हमारे देश के तू कौम से ओके तू स्कूलिये में से दृक्ष खवाइयो भैया। तो हम लोग के देश के तू कौम कहां जाएगा। तरी सोचो ई चीज भइल है हमारा देश में। और बताए गए हैगा मेजर स्कूली एरेस आन बताए गए है twee dagen daarvoor hadden schoolleden via TikTok een video bekeken waarbij een echtpaar koekjes consumeerde waar er drugs was verwerkt en daardoor high werden. Deze koekjes staan bekend als Idibles. Je kon ook koekoek namen Idibles, maar ja, Suriname hoort het doei mila bejaat raadje joa. Obole hega, ik is van kaise koekjes wilde uitproberen. Daarbij gaf RS een medescholier kebideise. Aur ook er baap भैया द फादर फन एरएस दी बेटन वाज फॉर ऑन द यंगरन अप द हाल मेरक करिसेगा कि उ घ
hare, hij naar huis. Haar moeder merkte kort daarna op dat haar dochter kort aanwing. Matlab sasna lepa wat raha. Ook haar hart kloppen karat raha. De ook haar vertoonde ook naar haar kleding uitdeed. Obole hega. De moeder aarzelde geen moment en deed direct de slachtoffer. Mijn moeder politie weer oele gelegen. Obole sipa hij ook een partij ze direct is te hulle. De eerste hulle met patamilel hega. En medische team stelde vast dat er marijuana in de bloed van de tiener was. Waardoor zij het op observatie werd genomen, belokker koen met ganja milel. Tijdens voorzichtig van een onderzoek 11 mei ke doei verdachte ke pakraan he. Sipahi bureau bankerise obole koekjes aangetroffen. Koekoen bipai se. Het vermoeden bestaat dat hij de koekjes maakte en verkocht. Verder deed ook nog komen vast te staan dat het niet de eerste keer was dat de verdachte ergens deze koekjes had gekocht. Beide verdachten zijn de afstemming apisepke koeko jaiga bhaiya jahliya me khai. Deko kauncha kallas hove hamare anani ki school ke ladkan ke koeko banai ke khawawe he. Ab deko hiya se jayyo Surinam Rajesh ta apan passport bhaiya kam se kam जहां तू रहिए हुआ ना धरिए कोई जाने ओई चन आदमी भी ना दिए कहीं चुरवा दिए कहीं धल लिए वन यहां पे गो जबर जब रूप भैले सन्ना में भैया रूप भैले को बैतल अंदर के ओकर का बोले हैगा ओके बहुत ब्रुताल परमारी वो में सब स्ट्रात रूफ करी से पासपोर्ट आसपोर्ट लेके ना चलियो भैया यहां बतावे घरे छोड़ दिए नहीं कहीं लुकवाई दियो यहां बतावे द मन फॉर लोरदार भाई ओकर तास ओकर रेस डॉक्यूमेंटन एन अ ग्रोट गेल बद्राग ओकर सबन लूट ले से नाम पे और नीचे बोले त्रिस्त्रात के वांछित है हमारी जनता और बोले पलोचलिंग बनाडर दोनों अनबकेंद मन दी फरदाख्त ग्रीप ऑन फॉरवर्ड द स्कोडर तास फन ए स्लाख्त ओवर ओके लीक ओकर तास पेल भाग जमा उकर बिचारा के टिकट रहा भैया ताश में पासपोर्ट रहा और 3000 यूरो रहा दोस्तों अनबकेंट हैं मैंने ओम के इफ कौन स्लाख्त ऑफर्स नीट आन के इफ फिया वेल का रूट द दादर इस कफले और भैया अपने टूरिस्ट रहा तो जान ना पाई सेगा ना जान पाई सेगा कि कहां कौन ची और कैसे लेके सबन और भाग्य है हमारे जनता अब देखो कौन चकल्लस भाई लेनानी सुरीनाम देश में भैया लोन रजेश सुरीनाम जइयो भैया ढेर के कंदोम लेके जइए वन जोन जोन आदमी के ना है बांटो डडिए उ बदुल करीला वन थेसुआ में बड़ा ढेर हा इफे फिरस होई गया भैया एच होई गए है याद करियो जॉनी का बोले है हां जइयो भैया त कंदोम खबराई करे में ना चुकियो जा होई सके शायद दुई गो तीन गो लगा ली हो जा चाहे बोट के हेडा इनम समुंदर के ऊपर दिखाई लेकिन अपन फेल है जोन है उ बहुत वो है अब देखो सुरीनाम के खसों थई सरख जोन है स्टांसी से बोले देसवा में बहुत ढेर सोवा सोई गए भैया और हाई फे मतलब एच सोई गए भाई बहालफो दैट इट फेल विद बसमतिंग इन सेन को कॉन्स्टेटेड ब्लैक ओ की बोले आदमी लोन बहंदल और सोरख नो द के फॉर लाखर इस आदमी लोन दतरातरा ना जाए भैया ओकर बारे में और बोले और मेर सिख तक रहेगा ऑन द ऑफंग फॉर द प्रॉब्लम फॉर द इस मान तेगो लांडल का टैक्स अक्षी भैल की सबको जाए अपन टेस्ट करवाई सके है तो ई अक्षिया है 4 तारीख से और 15 तारीख मई लेक बिरकर जाए के खरातस में 85 तक टैक्स लोकेशन जो देसवा भर में है जगह में जाए के 3 और 10 मिनट में और एक क्वार्टर के बीच में जाए के अपन टेस्ट कर सके हैं बोले मौरीन फन दैक फरमीन अलखमीन डायरेक्टर मेडिसिन फार्मेसी जंदिंग बतावे हैं तो अगर ये आम सुरीनाम बाटो
आइलो बाटे और जाए बाटे तो जइयो भैया अपने के टैक्स करवा लियो। सरनमुआ भर में जैसे चिकुनगुनिया आफन मचाई से ऐसे एज आफन मचाई से भैया तो उके ओवरड्राफ्ट जोन हुए दोनों सेक्सुअल ओवरड्राफ्ट हुए में से वे वे के अलमल दिमाग के कहां लाख भैया रामदत। मां एक विल इट वेल सेगे गा 2 ऑफ 3 गा एन कंडोम gebruiken die kwaliteit ook is भैया क्वालिटी चीज यो अटल फटल चीज ना खबराई करियो ना। और जइयो हुआ पे जनता के ये बतइयो हिया से जइयो तो और बोले हेगा मन कितने आदमी लोन हिया जाए भैया केलवा लोन जा है सुरिनाम देश में तो लोन समझो है अपन खनित करे कुछ ना कुछ करो भैया मां फैलक दूर फन देख रूप सामने लिविंग ऑफ ओम खबराई के माका फन टेट्सवे वनन वो geen mogelijkheid hebben dan schreeuwen we om mogelijkheden dit is de mogelijkheid maar maak er goed gebruik ervan bole hai ye cheez hai ga to gita kali bhi langa dam wala aayegi hai aur o gita aapko hum bahut pyar se apne program mein swagat karte hain thank you well gita ji bole hai ga suriname mein itra hoye h gita ki admi loan bole jaise chikungunya hoye oise h hoye soa hoye hai to wahan pe 10 tarikh aur 15 tarikh mai le bole free admi jai ke और अपने के टेस्ट करवाई सके है बोले बिना द अनपखलिक नादरक फॉर कॉमन ओम ओवरड्राफ्ट फॉर मदर ऑफ के स्वांगर फ्राउन वर्डन खतेस ऑफ हाईफी। और बताई गई है कि भैया लोन हिया से जइयो जा सुरिनाम से ना जइया बबाल करे भैया देशवा भर में जैसे चिकुनगुनिया काटे है ऐसे हुआ एच है भाई और सोवा है एंडर मुतवे मेट ओस अल नाम लाइक अलर्ट साइन दैट खातत ओम और हमार तो काम है बोले के और बाकी अब तोर काम है कोसु बेचियो कि कोसु पहरियो अपने आप के बचियो कि अपने आप के ना बचियो। अब देखो भैया आप लोन जानो है हाँ हम लोन के बोली ला के बोली ला धीरन धीरन बैल भैया जो जानवर के पीटे पाटे चलोन जानो तो ते एगो 17 बरिस के लौंडा भाई हाँ 17 बरिस के लौंडा भैया एगो बिलार के भैया 12 मार मारी से छुड़ी से के सिपाही पकड़ी से जिके घर में बिलार है भैया वो तो जाने उकर प्यार है द फरदख्त सो अन पुश फन से ब्यूर फॉर आवर एरस तक हेवन में सांदल एंड फर्स्ट खलेक और बिल ऊपर से फिल्म बनाए रहा भैया जैसे अमिताभ बच्चन के फिल्म बनाए रहा सोचे हम में अनमी लोन बोले हैगा बड़ी तारीफ करी कम बिलार मारीला भाई बोले हम बिलार मारीला तो जैसे टिकटॉक सब करे ना गीता ऐसे ही बिलार मार के पर टिकटॉक बनाए रहा। तो बताई गई है संतो बोमा के सिपाही एक पकड़ के ले गए है कि ई धीर में सामलिंग करी जाओ ई स्ट्राफ बार है द बीते हुए अलमाल में से सो खात तुख अब हम तरी जाई तरी नीदरलैंड के ओर नीदरलैंड के सिपाही का करी से भैया पकड़ी से 10 गो आदमी के पकड़ी से भैया और बतावे हैगा 10 गो में से 8 गो रहा कोलंबिया के आदमी और 2 गो हॉलैंडर रहा भाई दी वर्डर फरदाख और इस अफेयरसिंग में सैंडलिंग इन ऑन फूरिंग कलर रहा 2 नीदरलैंड से को 47 यार के फरवरी में भैया सबन एक पकड़ी से दुगो के कोलंबिया में द मानन सौदन फनोई दार अ रोल हैव गस्पेल इन ड्रग्स हैंडल मेट यूरोपा तो लो जानो कैसे हजार ने कितना पकड़ा ने ड्रग्स हुआ तो फोकस पॉलिसी स्टोन से नो कांटेक्ट विद द इन्फ्लुएंस रे को ड्रग्स कार्टल। तो इस ड्रग्स के बारे में आज आप लोग को बड़ा ज्यादा बताई चुक ली है बड़ी लंबा चौड़ा लिखल है मौसी मां हम तो के का बोले है इतने बतावे। अब देखो दादा अब क्या हुआ है आओ जानो अबे ईशान फंडरसान के बारे में बताइली भैया तो ई और बाउटस के रखेरिंग में रखेरिंग के आदमी रहा एक के संबंधी एस बे बांग का बोले बफेलर सुधार के बहरे बिगी से तो अब ये नमिया गए ओझाई करे नानी हाँ गए ओझाई करे ई बात है सुरिनाम में भैया हाँ
और आगे हम आपको अपना प्रोग्राम लेकर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों बातचीत ई होवे है यहाँ पर है। तो लोन जानो है निकेरी में सब के बोले है तो कोने वा निकेरी रशीद दुखी भैया एंडे पेयर है जबड़का और रोका बोले है देना में भी बैठा था तेजस रखे रिंग फन बाउटर्स के बारे में तो लोन जानो है। तो रशीद दुखी अब का बोले भैया रेसलान के और रेसलान के और सिमोन के अब के रखे रिंग के अब की के रखे रिंग के बोले फोकस आउट एनडीपी रशीद दुखी बोले है बोले अब तक बोले इस सब बहुत बोले कुछ करबे ना कर जैसे वही ना खदान इन एटलान। तो राज राम लगन आज भी हमारा प्रोग्राम में आकर जुट गए हैं। तो हमारा राज आपको हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं और हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारा प्रोग्राम में जुड़ने को। तो आज भी हम फेसबुक के माध्यम से लाइव है दोस्तों और आपके पता है मंगलवार के है और शुक्रवार के हमारा प्रोग्राम चलते हैं। तो यहाँ बताए गए हैं रशीद दुखी बोले हैं बोले अब तक तो नी तो हेल वैनक बराइक बोले कुछ बराइक न हुआ सारो बगल में भैया अरमी लोन सरनाम में गीता अरे बोट चलावे डाम पे मोतर बहुत से भैया तो चो कौनची होई गे दसवा में कौनची होई गे बरखा इतना बढ़ से है और का बोले पहले जब बुढ़ा रहा था बोले चान करवावत रहा था चान ऊपर से पानी बरसवावे हमें जना भैया द रियो ले रहे हैं द अफोर्स एंड आलमान इन सुरीनाम फर्स्ट स्टॉप भैया। अच्छा ओके छोड़ अब एक बात हम बतियाला रशीद पीर खान का बोले हैं तखलाई कर तय हम बोली ना पीर खान रशीद दुखी का बोले सॉरी मेंस बोले हैगा 4.5 बरिस बोले फिर एन हाफ ईयर ऑफ करेक्ट वैसे कान वर्दन ब और देल आन खसी सही फोन प्रियोर 5 बरिस को समन की शक्ल ले रहा और बोले हैगा 4.5 बरिस बोले प्लस मिनट 4.5 बरिस है दुखी इन इंटरव्यू रेडियो पे बोली से और यहाँ पे और चीज बताई से बोले देसवा बोले अब तक ये सब कुछ ना बराई करी से फॉल्कर दुखी बोले है का स्टार्स हो ओपासन दर्द पार फंड स्लेक्ट मिनिस्टर हरे पोटासियन खुद वेल नीत खराबल खोयें सो आज दर्द में वेलन अने संतोकी इस खबर में पर्सोनल आज अल्बर्ट रामदीन एड परमानेंट सुदीन आज मिनिस्टर दुखी फिर ओवरगंस दर्द रिशोफिंग फंड मिनिस्टर नीत लोग देखे तो हम लोग तो जाने ला भैया कौन कौन चकलसल भैले जोन फे यहाँ पे हार गए है ओकर मिनिस्टर तर लोन जोन है अपन काम नमुई करे रहा वार दूर फे हापे अनलास हो गए दोस्तों। आप लोग जानो है अब इरके रिंग में बोले रशीद बोले है रशीद बोले दुखी बोले है भी बोले मोई से एक काम ना होवे है। हाँ और दोस्तों अब तरी हम जाए तो लोग जाने देसवा भर में सोना खोदा है जंगल में और बोले हैगा भैया पोरक क्रॉकर है। हाँ खवान खराब फॉर फॉर लोप के इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन फन स्लॉग तो फिर इन मेन पेशेंट खफालन यहाँ बताए हुए है अरे मियाँ भी जाए गिर गए पानी में तू जाने भारी भारी गढ़ा खोदा है भैया सुरीनाम में तब जाई के सोना मिले है बहुत आदमी मर जाए भैया पेटिए में गिर के कितना सोना खोदत में मिल जा है और कितना है नाना जो रूफ में मराई जा है। हाँ सबन रूफ करे बड़ा जोर ब्रासिलियान और हुआ के आदमी लोन चोर चपाटी जाए के बेनलांत में और रूफ करे बड़ा जबर भैया तो कितना आदमी दगाई जा है। तो ये बात है हमारे जनता प्यारे प्यारे जनता अब देखो पानी इतना बुड़ल है तो अब का बोले है असेंबली ले इफानाल्डो प्लेन एंड पीएस के बोले के कर कसूर है अरे भगवान के कसूर ना दिखा देवे तू जाने एक एक गो आदमी ना बोले अनोमी फौतिया रे गीता कैसे बोले अनोमी फौतियर है। हाँ तो बरखा बरसे तेरी फालतो बोले वी एस्क्यूलक फन अंडर वाटर ओवर लास्ट पहले रहा चांद मर गए बेचारा तो अब के कर ऊपर उंगली दिखाएगा तो बतावे है इतना बरखा बरसल है बोले रीबा घर में आदमी के पानी
स्कूल में पानी आदमी जो काम करत रहा काम पे ना जाई पावे वर्क नहीं मस क्यों ने हुन हैस नहीं फलांतर ऑनडर नहीं मस से हुन बसितंग इनकम्सन बदरेक फॉर वर्दन ऑटोमोबाइलिस्टन ऑटो जो चलावत रहा भैया स्कादा भोवे ऑटो में नोट को दुआंग दूर ओवर कस्टरों में वीकन मुस्तन से राइडन और बोले है का फ्रस्टासी देसुआ में गुस्सा है मख्तलों से मद फ्राग की एक एकर कसूर है Wie is schuldig van de overlaas? Anomie! Raad, als je naar boven leeft, anomie! Toen hier betaalde hij, Marijanta, het antwoord is niet eenvoudig, want de waarheid is dat wij als samenleven collectief gefaald hebben. Abole hai bole santoki ke kasoor na hai bole janta ke kasoor hai aur pehle janta ke kasoor na raha minister ke kasoor raha the overheid draag een zware verantwoordelijkheid maar ook burgers moeten eerlijk durven kijken naar hun eigen gedrag bole we kunnen niet blijven wijzen naar de regering terwijl sommigen van ons zonder schaamte de oude koelkasten vriezen matrassen en andere afval in de trenzen en goten dumpen we kunnen niet klagen over verstopte afwateringskanalen terwijl men de auto ruiten, lege flessen, plastic bekers en andere vuil op straat gooit alsof het normaal gedrag is. Dat u janta ke kasoor na de bhaiya bahut lamba chowda hamdela dat u bole hai janta ke ki janta botal bhige sab verstop hue hai janta aiskasi bhige pani mein verstop hue hai ta regering ke taak hai ऊपर ना बूटू मारे उस सब के खात अपलोसिंग धरे सेट हेल्थ जैसे हम लोग के नीदरलैंड में है कि बोतल पे 15 सीस के तरह धरिए सेट खून अम बतरा ऑफ द फ्लैशेस में से ते देखिए जिनकेन गोत्र हुआ मैं से अपरे से हल के निकारे जाई के बेचे खातिर और बेच के पैसा किन के दृक्ष कीने के एक को पेट फ्लैश तू ना पाइए एक को बोतल ले ही का डाम पे ना पाइए एक को फॉर स्टॉपिंग ना पाइए दैट इज एन हील eenvoudige oplossing. Maar dit moet toch de regering gaan doen. Bhaiya Raj, regering kan het je hintje wakker keer. कि रखेरें खाली बोले कि जनता भीगे है सौरख फोर की जनता ना भी कहे ना हिया भीगा है नीदरलैंड में भीगा है हिया तो फेलस बख में अदमीलों जा है और वही मसे ब्लैक वन निकारे जे मस्तासी खेल थे और सब ले जाए और अल्बर्ट है इनमें और दूसरे दूसरे जगह पे कहा बोले लीफर करके ओसे सब अपन दूर बड़े किन के भी घरे ले जा है और जो पियकड़वन है नशेड़ियन है वह बीन के जा है तो एगो ब्लैक बीरी किन लेवे है या कुछ किन के पियत कहे ना सरनाम में हो सके और तो इधर चीज ई है भैया जो निया पे लिखल है कि ऐशकाशी बिगा है पानी में वो सब चीज बिगा है तो समुद्र खेरिंग एंड फिर सौरख कि हुआ पे भी ये तो के ख्रोट फैल है ख्रोफ फैल है मुझे अस्प्राक माकर वर्त ग्रातस अपगहाल दर खात ओ मेंसे तो ऐसे आदमी उस सब चीज हुआ पे ना बिगी और जब तू बिगले बाटे दन करेंगे अनहेल ग्रोते यानी कि boete ervoor en de kosten van de opruiming moet je ook gaan betalen aan de overheid. Is dit een moeilijke oplossing? Of Suriname, bhaiya, badka badka ingenieur hai. Regering mein baithe bhaiya. Aur bole hai ga janta ke kasoor hai. Maar wat doet onze regering? Het is alleen wetten en regels te maken. Dat zijn de oplossingen. En dat kan de regering. Geen één regering heeft dit gedaan, mensen. Laten we daar even duidelijk maken hoe deze problemen opgelost kunnen worden. Or adviseur ke upper adviseur kalaya kha bhaiya. Jaise moos kalaya kha de swame. Aise hua pe ek se ek adviseur se ja khali paisa lewe hai. Aur paisa lewe ka e sab adviseur wan kaun chi kare hai rakhne ka advis na de pawe hai ki e problemon hum kaise hum bhala oplos kari. Dit moet toch wel kunnen mensen, dit moet toch wel kunnen. Dit zijn allemaal. Ab dekho bhail hai ka ee baatchit hue Klesia mein bhaiya pani budal hai sab rasta aur Salais Wakhtar ke pate na kahan hai
सुलाइसो अख्तर के पते ना कहा भैया खाली कलपुआ तो के चाही खोले के तो अब जनता हुआ के का करी से भैया। और सुलाइसो अख्तर कहीं दारू पे के सूते कि कहाँ सूते हैं, जनता देखे रीबा के पानी सका है और ओकर रास्ता गुतरो सब बुड़ल है। देश क्वेश्चन नाम ले ओम ओम ओम ओम द स्लाइस ओप तमाक। और कोई जिस स्लाइस वाक्तर के पते ना है तो क्लेफिया के जनता अपरे गईले भैया, अपरे गईले केती खड़खड़ खड़खड़ उठाई के और अपरे क्लैप ऊपर करी से तब देखो कैसे पानी निकल के बहरे जा है रीमा में जा है। एक बार में एनडीपी के एनएफपी के पार्लियामेंटारियर किशन राम सुकुल भी हुए रहा और मिनिस्टर के बैलकनी से कि कम करतुवन कहाँ है भैया, कम करतुवन कहाँ है, एगो स्लाइस नुआई कॉल पे तो के लांटी हर महीना पैसा देवे है, तो के सीकफोन्स देवे है, तो के सब कुछ देवे है और स्लाइस वक्त लोग सूते हैं कि एगो क्लैप तो जाए के ना खोल पावे है। तो क्लेफिया के भीड़ बहु ओनर्स जो है भैया वो सब गए ले अपरे से स्लाइस खोली से बेस है इन्फॉर्म पार्लियामेंटारी किशन राम सुकुल और आलस हेफ्टी फर्स्ट कलेक्ट नामले ऑफ एट बेल दस नी कने सख कि कैसे चीज हुआ भइल है। ऑफ कॉम सेक्रेट क्लेफिया बोले है सख द मेयर द पोखिंग से खनान ऑन कांटेक्ट क्रेगन मेट द मिनिस्ट्री फॉर ओवे संग से दरबाय वर्ड आंगेगेवन दैट द स्लेसवाक्टर अंडरवेग फास मार द बिल्ड बोनस विल द नीड लंगर वक्तन तो के स्लेसवाक्टर के काम नहीं तो के चाहे मिनिस्टर के बैल करे के भैया तब वो बताएगा कब हम रास्ता माटी वन अब हम दुकानिया में एगो ठंडा ठंडा बीरी बारेला। तो इर्शिला भग्गू समुझ भी आ गया है पंडित तिलक धारी वैक्से और भैया फतिंगन राम राज हरिओम हरिओम हरिओम भी आ गया है। तो आप सबको हम स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में। तरा सुकुल स्वाइस वाक्तर बोले बरिशन से बोले काम पे बा जनता बोले के प्रॉब्लम बॉय स्वाइस वाक्तर वाके एडवर्क वर्क मेर फर्स्ट स्कीम आज फॉर एन ओपन फंसलेशन टरवेल द प्रैक्टिस ons vraag dat de deuren 2 tot 3 uur eerder worden geopend. Daarna zouden sommige sluiswachten te laat komen of zelf helemaal niet opdagen. To i hamara des ke, hamara des Suriname ke aadat hai bhaiya ki man karo ta kaam pe jao aur na man kare ta ghare suto. Nahi bole hum sik baati bemar baati sau khanam ta bhaiya sau khanam boli hum बीमार है और उ गईल है भैया मछरी मारे। अपरे जाए मछरी मारो काम पे सिक मेल कर दी एक को कंट्रोल ना है कि अदमिया सच्चे के बीमार है कि सच्चे के बीमार ना है तरी सोचो। तो राजेश किशुन भी आ गया है और वो है लंगाडाम के। तो राजेश किशुन सरनाम बुड़ गए भैया चांद बुड़ाई से। तो ये बातचीत है अभी हम बताई है पूरा देश बुड़ गए भैया। और का बोले हैगा अब बोले जनता के कसूर है तो जनता के कसूर ना है रखेरिंग और रखेरिंग आयल है एक को न गए लेको खुए बलाइट बनावे भैया कि जितना आदमी बोतल इधर उधर भी गए सबके चाहे लीफर करे दुकान में तब तो ओकर पैसा पइए कर बारे में। अब एज ब्राइट हमें कर बारे में बताए रही कि आज सरनाम में भैया आदमी लोग के घर में पानी है आदमी लोग डाम पे वोट चलावे है निकेरी के जनता जोन है मसाल नहीं रखे पे का बोले हैगा स्टेम कर ले रहा कुछ सबके प्रॉब्लम ऑफ करी ऑन द संतोखी ना कर पाए रहा आज तक रास्ता सब ऑफ दम इनके से बुड़ल है भैया कि ओ तो चले के बहुत बहुत दिख है दुख है। तो हम जाए तरी नीदरलैंड की ओर हमारा देशन सस्तक की ओर रॉब येतन हम लोग के प्रीमियर जोन है और मंगलवार के गए है बोनेरा के सिकन हाइट्स में और उन्हें नादात है तेईस है स्वयं दूर इस वास का प्रेक एन आले रखिस रियाक्सी करे है प्रोग्राम ऑफ से बुसुक फन और उबैन बोनेर इस दार ऑप आन खपास भैया गैला पौड़त रहा बोनेर में और हुआ कुछ गड़ गए है तो ई जाए के
हुआ बोने रे के अस्पताल में रात अपन प्रोग्रामा से बदल दे से और यहाँ हम लोग के बाला स्टिंग जो ने भैया हम लोग के गटाई दवाई से और नवा नवा चीज यहाँ पे भरल भैया इस सब मांगे फिनो इन लीफ ते जोन पेंशन लीफ ते तो फिन ऊपर करे आप लोग तो न्यूज में देख ले बाटो कि हम लोग के यहाँ जनता गटाई दवाई से तेल के दाम यहाँ पे भैया डाला हो गए है कुछ सस्ता ना हुए है विया जो नदमी पावे है जो आपको क्योर थे ओके सबन मांगे ऊपर जाए ओके मांगे फरकोर्थ करे हाँ और इस सब चीज हम लोग के जनता के ब्लाइफ चिमार द्रुक एंड द्रुक एंड द्रुक दिस इज नीदरलैंड इज ओक नीत हुत मुत मेंस दिस ने ढेर आदमी सोचे थे बहुत विशाल है नीदरलैंड भैया माजे यहाँ रहे हैं वही जाने हैं कि ओकर संगे का हुए है कैसे यहाँ पे आदमी लोन अपन चलावे है भैया अति हिल हिल मुइलक घर द्वार के बारे में इनफन आलसमेंस बड़ा देर हम तो लोग के दिली हम बोली आप तो लोग के एगो चटनिया हम सुनाई दे चटनी के बाद में अब हम वापस आएंगे मत जाना चलो तरी पिंग पोंग करे भैया पिंग पोंग तो लोग जाने क्या है सुनो कौन जी पिंग

ಡೂಯ್ ಡೂಯ್ ಡೂಯ್ ಡೂಯ್ ಡಮಾಂಡುಳುವ ಡಮಾಂಡುಳುವ ಅವ್ರಿ ಈ ಡಮಾಂಡುಳುವ ಸಬಕ್ಕೆ ಡಮ್ಮಾ ಡೋಲ ಕರ ದೇ ಇಸೆ ಭಯ್ಯ ತೋ ಹಮ್ ಚಲತೆ ಹೈ ಅಪನಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೋ ಲೇಕರ್ ಔರ್ ಆಗಿ ಹಮಾರಿ ಜನತಾ ಹಮಾರಿ ಪ್ಯಾರಿ ಪ್ಯಾರಿ ಜನತಾ अब देखो यहाँ पर ही जो बूढ़ा सूरीनाम में भैले भैया संघ का बोले मिनिस्टर फन ओवी का बोले है ओरू बोले हम लोग बहुत जबरदस्त बोले पेर्स कॉन्फ्रेंसी कर ली बाटी बोले पेर्स कॉन्फ्रेंसी कर ली बाटी 11 तारीख मई के कि जैसे सब पनिया एक रोज में इसब सोख ली तेज बहन कौम साल मिनिस्टर इन खानों प्रियोरिटी periode worden genomen over de situatie aan te pakken. De apisep kan je aanpakken. Malum na bhaiya, maar laten we even afwachten en vertrouwen hebben op deze regering van Sang dat ze met een oplossing komen. Want janta hoa pe bari duk me bhaiya. Itra barka ha kabule hega duk he hoa. अब देखो और आगे हम चला जाए भैया तो यहाँ बतावे हैं बताई गए हैं कि आदमी हुआ पर रोफुआ अरे कहाँ है हमारा वो है मिनिस्टर फन मिनिस्टर कहाँ है काबले है यूसीसीएन पॉलिसी के हनीश मनोरथ के बाद बतियाला हमारे जनता हनीश मनोरथ बोले है बोले रोफुआ कमती भइल है और यहाँ पे देखे वो फिरन दर तक या रख अतवार के और बोले है यहाँ पे बरूफ भइलेगा ईशान अलबर खसस त्रात में दुई को मस्कर वाल आदमी गइल है खवापन मानन प्रोबेर देखो केती फन फ्रो बैठ माकन एगो केती घंजत रहा maar Rova mislukt hoe je hem volgens de verklaring van de slachtoffer zij had samen met zijn moeder en een andere persoon voor een woning toen de verdachte plotseling je karia jamha bronvies bij eil he outral he en bole je karia karia veel wapen nikari se op de moeder okar maik oppar proberi okar keti okar ghatai me se ghaiche ke en bole otre me bole maya se usse kusti hove lagal jabar just ma ja raha hoi to aysan taysan maya thoro hai taide the worstling brak the ketting ketia toot ge hai maar doordat de vrouw zich hevig verzegde slaagde de rovers er niet in om de buit mee te nemen naliai paise de gewapende verdachte loste daarbij een schot in haar richting de vrouw werd gelukkig niet geraakt wat heb dagis auratia ke bhi maar auratia ke gelukkig nalagal bhaiya obole van Landsbergstraat Rambranders klaag ke baat hai bole hega man zette de achtervolging in maar een van de criminelen draaide zich om en vuurde nog twee gerichte schoten af een kogel trof HB in zijn linker onderbeen bole hij slacht of werd per ambulance bole chorwan ke dawrai se maar chorwan ulte dagi se oke bhaiya jo rokar adamiya ke ghode me lagal hai aur batavega sakwa bole onder suk hove hai bhai aur choror ke piche na dauriye jae bhaiya tu apre dekhe chorwa dagi sab me ghode me lagal hai ante lag ja tab to ye admi mar jaat bhai aur chor ke ka ho tu jai ke jahal kaat ke aur dheere se bahre ghumat tari socho to bhaiya tu chor log ke baat chit e hove haiga हमारे जनता एगो आदमी के नाम बा भाई ना भौजी वाला भाई भैया ये आदमिया के नाम बा जयन कल्लू मिसिर नाम के मुताबिक तो हिंदुस्तानी है सीन देर तक या रख भैया ये आदमिया का कर ले रहा एगो बड़का और खानी सासी में चोरी के काम कर ले रहा भैया द फोर्थ फॉर द मन वाज एर्दन एक्सटर्नल ऑपरेशन ब्रेक रहा बोले पुलिस एक मर्डर फुरते एक दिन चोरी करता रहा ओ तो भाई वर्बे आले द्री गस्टोलन फुर्तेगन मिल गए हैं और फालन इस दा दे ट्वी दार फान टोटल गस्लोप सेंट रिकफोन ओ तो वाई सब चोरी करके भाई वा स्लोप करत रहा और बतावे गए हैं एगो नवा त्यो उता फेस इस चोरी कर ले रहा संतो दरप में तो फुर्त एक बार लातर ओके सबन खोल काल के वेल खली खन स्ट्रात में पाई से क्वाटा में
Ari kaluke si pahi pakali sa bahiya. Toyota pasaw ang nalaiswek may chori kalera forga yan. Dipsal van Toyota Foxy ang naipal strat may kwarta me. To ap ike si pahi pakali si 37 yar ke nam ikar bay nam ba bhai. Bhai nam ba bhaiya. To jane fistikel ke filmon me bhi bhai bole to. To ye maant hai hamare janta hamare pyare pyare sundar sundar janta. Ab dekho Samson ka bole hai aantrek en saya geen handeling die in strijd is met de wet en regelgeven te loon jane saya mikson haitian to omange uhega ka bole adviseur banel hai to Jeremia bole bole ko problema na hai ha gemaskerde rovers slaan toe in appartementcomplex meerdere woningen leefgeroof via Egona Auro dheer ghar kasi roof kari se hiya apartment me bhai hiya se bhi admi jata apartment hir karke rahe hain to hiya bataye gaye hain yahan bataye gaye hain sipahi pakdi se roof overfall bhele warning in braka raat ke tapai straat me aur belwarder weg me hua apartment ne bhai complex hai ga volgens de aangever trapten de daders de achterdeur van een van de appartementen de bewoners vluchtte samen met haar partner uit angst naar een andere ruimte nadat zij lawaai had gehoord. De indringers verlieten het appartement uiteindelijk zonder iets buiten te maken. Orbataye Gallego, 26-jarige, onder schot gehouden. Daders maakten tijdens het beroven een rode iPhone. Auro toebehoort aan zijn vriendin. Vrouw raakte in paniek, rende weg en kwam daarbij ter val. Volgens slachtoffer waren twee van de vier daders gewapend. Toch maar aan minister Bole. Bole Choria. Dank u aan de roofwa. Bole Bahut Kamti Huige. De Bole se thoro hoe he, bhaiya manorat. Tari kaam करके दिखाओ सही फर्स दिखाओ तो ये बात है हमारी जनता हमारी प्यारी प्यारी जनता तो यहां पर दिखाए गए हैगा तुलुन जानो है मेलक सेंट्रल वाला अरमिया के जानो तो डायरेक्टरवा डायरेक्टर हुआ मैं अलेक्सेंट्रल के तुलन तुरिया जानो ना बन रहा भैया और वो छूट गए है भाई फॉर्मालक डायरेक्टर और बोले हैगा मैं अलेक्सेंट्रल के बोले हैगा बवारिंग फलिंग डायरेक्टर कमिश्नरस वाज फ्रस्ट्रेटेन और बोले फ्रेय फुट हो गए है ओ डायरेक्टर वेट इन द सामन मैं द ओदर अंडर डायरेक्टर प्रेसिडेंट कमिश्नरस आंगहोदन फ्रॉड कलरा भैया एंटी करप्शन वेट के बारे में से बन रहा बाकी उत्सव के सखवा दोरो चले हैं फॉल्कस इशुशेल ऑथोरिटी के बदेकन दा दा इनफ्राइट स्टेलिंग नीत दा दा स्ट्राफसाग इस बाइंदे दा फॉर्मालिके डायरेक्टर ब्लेव वर्दाख्ते इन दा लोपन दा अंडरसोक हेट गरलेक्टलेके तो ई दुदुआ के तोरिया है हमारे प्यारे प्यारे जनता तो लो जानो मेलक सेंट्रल के दुदुआ जो ने डायरेक्टर वन सब चोरी कर ले रहा तो स्मोकल कर ले रहा मतलब दुकान में और पैसा उत्सव के जेब में जात रहा भैया ऐसे बात है फ्रीडरिक स्ट्रोप में भैया 20,000 यूरो एको फरलेंग फ्रीडरिक स्ट्रोप में 20,000 यूरो घर में से सामान चोरी करी से इन ब्रेकर्स और बच्ची एको छोटा के बच्ची लड़का पानी में बुड़ के मर गए भैया ओकर बोट उड़ गए रहा उलट गए बा कोरियल ऑफ द स्ट्यूमेर पे और यहां पर बताएंगे पुलिसिया खेंदुन आनखिफ्ते स्टेल द से फॉल्स इज बस्कुल दो द पेनिशियर अंत नारन के बारे में हमारी जनता आप लोग को छोटा छोटा न्यूज यही खबर बताई कि हमारा प्रोग्राम खत्म होने को आती है सिपाही फरदख्त पकड़ी से दोस्तों ना कि सिपाही कुछ काम ना करे सिपाही काम करे है मत अटकान फील बीटर से मेंसे मनोरत आपको हम बस्कुलख ना करेला लेकिन काम करो तो जबरदस्त काम करो और काम करो कारण की इचरवन उरवन अब्बे बहुत

और दोस्तों तू मेरी आसमां परे और नए गीत कुछ पुराने गीत से आप लोग को हम सुनाएंगे करेंगे। मत कर इतना गुरूर, कभी कभी लोग को गुरूर बहुत हो जाते हैं तो पंकज उदास अलका यागनी क्या बताता है। मूवी के नाम है आदमी खेलो ना भैया खेलो ना।

और दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं, कितना चाहते छुपाएंगे हम और कितना चाह छुपाएंगे तुम, और ये गीत है

छिपाएंगे बैठे आमिर खान या नाचो। दोस्तों जोंग ही जोंग आपको हम सुनाते हैं आंची और आप वहां हम यहां कि कभी राधा क्या बोलते हैं आओ सुना जाए।

0: से चलता हूँ।
1: और बोल ना राधा बोल, आज कुछ बोल किशन और राधा के सॉन्ग में आज हम मतवाला है दोस्ती। और राधा और कृष्ण का जोड़ी आज तक दुनिया पे और उससे जबर जोड़ी कहीं नहीं दोस्तों।

गोविंदा तेरे किशन कन्हैया मूवी का नाम है मेरा लहू। और दोस्तों आज कुछ किशन की मूवी में हम हैं तो एक और हो जाए, एक जान है हम आसमां के, आसमां पे लिखेंगे दो।

और दिल चाहे तो आसमां पे जमी पे दिल परे और जहां भी चाहो लिख दूंगा तुम्हारा नाम और तू तू तू तू तू तरा थोड़ा ना दिल हमारा।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

उनमें पल दो पल का शायर रे शायर और शायर हूँ। तो ये गीत को है सलमा और सबीना का तौबा तौबा मामा मिया।

और तौबा तौबा चक्कर में न आना और बुरा है जमाना, सलमा और सबीना का ये सॉन्ग है। तो ये गीत कौन है दोस्तों, ये भी एक यूपी पोल पद्मश्री मोहम्मद रफी का एक हिट सॉन्ग है जो यहाँ से हम आपको सुनाते हैं। तू इस तरह से मेरे जिंदगी में और आना, कौन इस तरह से आना, ये गीत आपको बताते हैं।

0: हाय जानी चमनी और तेरा गोरा गोरा बनन में क्या हलचल मच चुका है।
1: जब सिमट के
0: ओहो आशा जी रोमांटिक सॉन्ग वक्त सॉन्ग के नाम है जब हम जब जमीन पे वो फिक्र नाम है वक्त नई खतीन 165 का।

हम जब सिमट के आप और बाहों में आ गए, और वो है महेंद्र कपूर का ये सॉन्ग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला सॉन्ग के लिए। तो ये क्या है दोस्तों, हम सफर मेरी हम सफर, और वो नाइटिगेल नाइटिगेल, और वो है लता जी का ये सॉन्ग है।

हम सफरी मेरी हम सफरी और ये बहुत बेमिसाल जोन है हमारी यारो हमारी दोस्तों। तो अगला गीत के ओर हम चलते हैं। न्यू निवर्रे तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई और गुस्सा मत कीजिए पद्माश्री मोहम्मद रफी और नायकी ये लता जी का मोफी का नाम है दो कलियां।

तुम्हारी नजरें अरे क्यों खफा हो गई हैं और खता बस्त दो। दोस्तों ये एक मस्त भरी सॉन्ग जो आपको हम सुनाने जा रहा है हेमंत दादा का, ये सॉन्ग है।

0: और हेमंत दादा का ये मशहूर सॉन्ग है जो आपको हमने सुना ही दिया है यारो।
1: कवि न बन,
0: अगर कविता किसी हो तो ध्यान से सुनिए।

आपके प्यार में कभी कोई कवि ना बन जाएंगे। तो हम और एक चलते हैं, जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार अभी तक नहीं मिला है।

और जीवन भरे ढूंढा जिसको वो प्यार तो नहीं मिला हमारे यारो। दोस्तों लवली सॉन्ग बजाना हमारा काम है, हमारा काम है लवली सॉन्ग बजाना।

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी रोमांटिक सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग के मूड में है। मूवी का नाम है झनकान फन नई खतक और बलमा नई खत नई खतक का आशा भोसले का सॉन्ग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो दिल लगी ना किया करो।

0: या करो एवरी ग्रीन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं देखा कभी पहले।

और तस्वीर से भी और निकर के सामने आ। और कौन आएंगे? महबूबा ही आएंगे हमारे यारो। तो प्यार भरी सॉन्ग है, क्या दिल ने कहा है।

दिल ने कहा ओ क्या मैंने सुना लवली सॉन्ग, हम आप लोग को आज सुनाएंगे दोस्तों, तेरे नाम लिया और क्या किया, क्या किया तेरा नाम लिया और क्या किया, सुना जाए।

तू पूछना तो पड़ेगा कि तुम इतने दिन कहाँ थे, कितने दिन कहाँ थे, तो वो कहेंगे कि इतने दिन जहाँ भी थे लेकिन तुझे याद तो हमने किया है। तो अगला प्यार भरी गीत कौन है, क्या है? तो ये कहते हैं कि जब आप कहीं हो और किस उसको कुछ दिन नहीं देखा है तो लगता है कि तुझे हमने कहीं देखा है, लेकिन कहाँ देखा है पता नहीं चलता है। तो अजनबी आपको बताएंगे कि कहाँ तुझे देखा है।

अजनबी, अगर ये अजनबी आप हो तो आपको बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। अजनबी को बताना पड़ेगा कि तुम कौन हो। तो अगला गीत की ओर हम बढ़ते हैं। आप सभी को यानी कि शादीशुदा लोग के बारे में आपको हम इस गीत को सुनाते हैं। मौफी का नाम है सौतन नहीं खतीन्द्रिय तख्त का ये फिल्म है दोस्तों, और ये मूवी है। इसमें एक सुपर हिट सॉन्ग इसमें गाया है की जोर दादा ने, आओ सुना जाए। पहले भैया सूरीनाम में लोग जानते थे तो लड़की देखने को तो आते थे कोला, और इस गीत में क्या आते हैं आओ सुना जाए।

का ये सॉन्ग है, मोफी के नाम है सौतन दोस्तों, सौतनिया सौतन मोफी के नाम है। इसके बाद हम और आगे को चलते हैं, रोमांटिक सॉन्ग, एक और रोमांटिक सॉन्ग हो जाए आज अलका का, अलका याग्निक और द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार कुमार शानू के ओर हम चलते हैं। कौन सा सॉन्ग है दोस्तों, कौन सा सॉन्ग है, नवीन सरवन का म्यूजिक है।

ये दिल आशियाना, और उसके बाद हम चलते हैं। कभी कभी लोग को पूछना पड़ता है और कहते हैं एक बैन खेन अख्तिनवेर, वो लोग बोलते हैं एक बैन खेन अख्तिनवेर, और एकवा बोले है एक वोर्थ अख्तिन। तो ये गीत 18 बरिस से के उम्र का गीत है दोस्तों, एक सुपरहिट फिल्म सुहाग का है, जो नई गति होंद नई हनन जीवन तख में, और ये मूवी हलचल मचाए थे।

उम्र हो गया है तो कोई जतन करना चाहिए, और जतन के बाद हम चलते हैं। क्या आपकी जो आंखें है वो भी काली है? काली है या गोरी है या ब्लू है या लाल है, ये सवाल हम नहीं करता है, करते हैं लवाजी कर करते हैं।

0: ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: सुनने वालों प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं. कभी खुश यानी कभी खुशी कभी गम है फिल्म का नाम. इसी फिल्म से हम पेश करते हैं बोले चूड़ियां बोले कंगना.

अभी आप सुन रहे थे बोले चूड़िया बोले कंगना फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी हम से हमने पेश किए है जाने दिल में कब से है तू फ्रॉम द मूवी मुझसे दोस्ती करोगे इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, सुनो हमसे अगर गिला हो तो माफ़ करना, हमसे अगर गिला हो तो माफ़ करना, तुमको याद ना कर पाए तो माफ़ करना, दिल से तो तुमको भूलेंगे नहीं, अगर ये धड़कन रुक जाए तो माफ़ करना।

हमद मोफी मुझसे दोस्ती करोगे इसी फिल्म से हमने पेश की है जाने दिल में कब से है तू। उदित नारायण के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। एक सच्चा दिल सबके पास होता है, फिर क्यों नहीं सब पर विश्वास होता है। इंसान चाहे कितना भी सिंपल क्यों ना हो, वो किसी ना किसी के लिए ज़रूर खास होता है। दीवाना है देखो बेकरार हो, अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं। और अलका याग्निक के साथ में सोनू निगम और करीना कपूर जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं फ्रॉम द मूवी कभी खुशी कभी गम।

0: are you?
1: अभी आप सुन रहे थे दीवाना है देखो बेकरार हो from the movie कभी खुशी कभी हमसे हमने पेश किए हैं। एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते अलका याग्निक के साथ में कुमार सानू और उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं। द टाइटल फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा।

अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी दिल है तुम्हारा। अलका याग्निक के साथ में कुमार शानू और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे। इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, और गीत का बोल है कसम खा के कहो। अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं।

कसम खा के कहो, अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक के साथ में कुमार शानू आपको सुनाने वाले थे। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तो फिक्र में अपनी हंसी बर्बाद ना कर। मोहब्बत, मोहब्बत क्या होता है सुनने वालों, बताओ? नहीं बताने वाली, क्योंकि आप खुद सुन लीजिएगा। उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं।

आप सुन चुके होंगे कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत दिल का सुकून है, एतबार। तेरे आने से आए, तेरे जाने से जाए। अक्का याग्निक और कुमार शानू आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी रन से आप सुनेंगे।

आई से आए तेरी जाने से जाए। अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी रन से हमने पेश किए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब लोग फ्री होते हैं तो देर तक सोते हैं और देर से अपने बिस्तर से निकलते हैं, तो चलिए उन लोगों के वास्ते ये गीत हम पेश करते हैं, तेरे संग सिंपल सी कॉफी क्यों ना हो जाए। फ्रॉम द मूवी जमीन से हम पेश करते हैं।

फ्रॉम द मूवी जमीन से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते तेरे संग एक सिंपल सी कॉफी भी किक देती है। और जब आप लोग मुझे किक देते हैं ना तो मेरा दिल क्या होता है, डिंग डोंग डिंग डोलने लगता है। फ्रॉम द मूवी कुछ तो है इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए।

जब आसमान शंकाओं से गहराता है, तब भी तुम्हारा उजाला जलता रहता है। जब मशीनें शाम को चुप हो जाती हैं, हवा हाथ अपनी भाषा बोलते हैं, हवा और पक्षियों के गीत के बीच तुम हर दिन फिर से अनेक लोगों की समृद्धि बिना शोर का।

0: Vandaag heeft het Binnenhof, de Hofvijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
1: तो हमारे दोस्तों एकदम एकदम एकदम हम चलते हैं अपने कुछ लोकल जोन के बारे लोकल जोन की ओर हम चलते हैं तो लोकल जोन क्या क्या है आओ सुना जाए कोई मेरी प्राणों में

प्राणमी आखिरी प्राण बस आखिरी एक लोकल सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे रिकी जीव जरन का है हमारे यारो हमारे दोस्तों। तो हम और आगे को अपना गीत लेकर चलते हैं, तो हम चलते हैं एक और लोकल सॉन्ग हो जाए और वो है मेरे दिल यानी कि रोहित चांद का ये सॉन्ग है।

ये एक यानी लोकल सॉन्ग थे आपके, हमने सुनाई दिया और हम उसके बाद तो चलते हैं और वो अपने ही देन हाक का है और वो है भैया जॉन मॉकम सिंह का एक सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे और आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को आज सुनाएंगे। अभी आपने जॉन मोकिम सिंह के बारे में सुना है और जॉन मोकिम सिंह के बाद में अभी हम आप वापस और यानी कि और आगे को लेकर चलेंगे। और यह है अपना

लो मोर कहनिया, हम आए सूरीनाम तो इस गीत को, और ये चलाए हैं गाए हैं मोहम्मद शरीफ ई झाक ने, हमारे यारो हमारे दोस्तों लोकल जोंग हम आप लोग के लिए चलाएंगे। हम चलते हैं और कहाँ चलते हैं, ये कहाँ अनिल भीम की ओर हम चलते हैं, वो भी एक लोकल जोंग है।

और तेरे दुनिया से बहुत मजबूर इंद्रोनील रॉय का ये सॉन्ग है, कुछ लोकल सॉन्ग आज सुनाएंगे हम। चलते हैं किरण केदार की ओर।

और बुधराम होलास से दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरि सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़, और एक सुखा चटनी है दोस्तों।

और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों, कुछ सोकान चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेथ सालिक की ओर, ये भी एक सोकान चटनी आप लोग को सुनाएंगे।

और ये था सविता सिंह दोस्तों, कुछ शोकान सॉन्ग आपके हमने सुनाए हैं। तो हम चलते हैं और वो है हरीश बालक की ओर दोस्तों। तो हरीश बालक आपको क्या सुनाएंगे, यहां से आपको हम सुनाते हैं।

मई तो लाई है कौची मजेदार लाए ही और उस्तादों के उस्ताद हरीश बाले का गीत आपको हम सुनाए है दोस्तों। तो कुछ आज लोकल सॉन्ग आपको हम सुनाएंगे। तो हम चलते हैं राम प्रसाद राम खेलावन के ओर, वो क्या गाते हैं।

और कठिन भिन्न छोरा, तो ये गीत हम आप लोग को सुना दिए हैं हमारे दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं और पातर मोरे लग्या, और रवि गोगार इस गीत को गाए हैं। चलो सुना जाए।

0: और पांती मोरा ले जान सुगनवा तू कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे हमारे यारो। तो कुछ बैठक गाना और लोकल सॉन्ग अपने पुराने पुराने कलाकार सुरीनाम के हम याद करते हैं और उसमें से एक कलाकार थी श्रीमती औधराजी घिसे डूबे उस्ताद हरीश बाल के साथ मेरे साथ साथ श्री राम प्रसाद राम खेलावन और मेरे ख्याल से ढोल बजाए थे रकीब ने। दोस्तों आओ सुना जाए
1: गणपति सुधा बुद्ध दे।

और सरजू में करो स्नान श्रीमती औधराजी घिसई दुबे। उस्ताद हरीश बालक साथे साथ श्री राम प्रशांत राम खेलावन रकीब जी भी उसमें उस्ताद को उस्ताद है दोस्तों। तो हम चलते हैं उस्ताद देवा की ओर। देवी दीन घोरई इसका असली नाम है और जिसे लोग देवा के जान से जानते हैं। बहुत मशहूर थे अपने जमाना में, अभी तक उसका गीत बहुत लोग पसंद करते हैं। तो आओ चला जाए उस्ताद को उस्ताद देवा क्यों रे।

और कन्हैया कन्हैया पुकारा करे देवी दीन घुराई, जिसे लोग डेबा के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसे पुराने उस्तादों का गीत आप लोग को हम आज सुनाएंगे, उसके बाद हम चलते हैं और बैठक गाना। और उस्ताद वो है जगदीश, जगदीश है दोस्तों। और ये कौन जगदीश है जो गाए है चिरैया बिन बोले, चिरैया बिन बोले, और ये जगदीश गाए है दोस्तों। तो जगदीश का ये सॉन्ग आओ सुना जाए।

और चिड़ैया बने बोले मैं ना जाऊंगी, भैया बोले हम ना जाऊंगी। तो उसके बाद हम चलते ही एक गीत है, ये गीत बहुत मशहूर थे सूरीनाम देश में, बहुत मशहूर गीत थे और वो है शुकी अक्कल का दोस्तों। और हम खुद ही इस गीत को बहुत दिन हो चुका है नहीं सुना है, और आज रेडियो फाहून के माध्यम से हम आपको सुनाने चाहते हैं, और वो है सुकी अक्कल का ये जोंग है।

als er maar een goeie is, dan gaat het om wie dan ook mensen. Tja he, jo bhimile, lekin acha hona chahiye. To ye baat hai, suki kalka zong, dosto, koi zamana mein, aur wo ani bodha. शायद पुराने लोग की तो पता होगा, हमारा यौंगर को शायद मालूम बहुत कम होगा, लेकिन आनी बोधा भी अपने जमाने में अपने समय पे बहुत पॉपुलर थे भैया। कौन ऐसा जगह पे आनी बोधा का गीत नहीं होते थे, तो आप लोग को हम चलते हैं एक गीत की ओर। फन आनी बोधा का ये सॉन्ग है।

भी नहीं, ये कुछ पुराने क्लासिक ओल्ड यानी कि उस्तादों के जो उस समय पे कोई समय पे ये सब बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे दोस्तों। उसके बाद एक गीत को हमारा जो है भिखारी जी भी गाए थे, और वो समय पे कौन लोग है जो इस गाने पे नहीं नाचे थे या गुनगुनाए थे। तो हम चलते हैं उस्तादों के उस्ताद, और वो है भिखारी। भिखारी सॉन्ग को गए थे, आओ सुना जाए कौन से सॉन्ग। जैसे शुरू होगा आपको तो पता चल जाएगा।

मिर्ची भी छेद लेते हैं दोस्तों, स्कॉर्पियन भी लोग कहते हैं। और जो स्कॉर्पियन जो छेद लेंगे भैया, तब तो उसको दवा दारू कुछ और है। और जब बरैया छेदी तो फिक्स चलेगा, और फिक्स के बाद में स्लिंगोली चलेगा। तो दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं और वो भी हरिदत्त जयराम की ओर। और ये ना है हबड़ा कटावे वाला, ये कुछ और है दोस्तों, और सुना जाए।

दोस्तों छोड़ दे पीना शराब के बातचीत है, हम एक गीत और जाते हैं सनातन की ओर।

अफ्रिका ह्याप्पी सिल्फा हुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। प्रोग्राम गीतों का संगम में चटनी सोका आप सुनेंगे दोस्तों। एक बार मैं कहता हूँ चटनी सोका, फिर भी छोटे में मैं कह देता हूँ मिक्स म्यूजिक, जिसमें हर एक तरह के म्यूजिक मैं आपके लिए पेश करूँगा। मिस्टर राम नारायण या रीमोन नाम राम माफ के रीमोन राम नारायण के आवाज में नकाटिंग। नकाटिंग नकासानी

और तसीफ बक्स आपके लिए पेश करेगा किसरिया एक्स कर्म डॉन।

की बार दोस्तों, ये मोक्सी अलैसी नहीं, ये मिसिक मोक्सी है। और मिसिक मोक्सी में ओल्ड चटनी पार्टी फॉली में इनसे मैं निकाल कर आप तक पेश करता हूँ।

फ्लोरी बिना चटनी कैसे बनी? मैं सोचता हूँ आप सभी को मालूम है कि ये चटनी कैसे बनेगा। हाय शोली ग्याल, शोली ग्याल तू का करे है?

बिया और रूबिया। दोस्तों कार्तर कर्मा अनु ताकि मिनो लोबियू, सुमा ताकि मिनो लोबियू, मिलो बियू थ्रू।

मेक्सी पोकू चला है दोस्तों, अब की बार दो दो दो दो पोपो बिलैया टोके काटी, बच के रहना दोस्तों खरबोट लिए भी।

ये सही बात, ये सभी बात आप सूरज और फूलों से जरूर सीखना दोस्तों, जगना और जगाना। राजा सविता सिंह की आवाज़ में।

उन एक सविता सिंह के आवाज में भी आपने सुना। विशाल हीरा तैयार हो गया है दोस्तों, और विशाल आपको फरमाएगा भैया टेक लड़की।

आपस में देखा तो गए मुस्काए, जरूर मुस्कुराना चाहिए दोस्तों। जब नजर लग जाता है तो वहां पर मुस्कुराने का बात भी होता है। अब की बार इंडियन रॉम शॉप ओल्ड लेडीज

यात्रा में एक दो चटनी सॉन्ग चलेगा दोस्तों, और चटनी सॉन्ग आप जानते हैं, जब चटनी का नाम लेता हूँ चटनी सॉन्ग, तो त्रिनिदाद गयाना वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चटनी सॉन्ग गाते हैं। तो मैं त्रिनिदाद से शुरुआत करता हूँ, शाम सुंदर पृथ्वी के आवाज़ में। That's dance.

सोका व्हाट सी वांट सुविधा लोटो लेके जाए क्या बात है त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सॉन्ग सर तो तैयारियां कर दिया है तो उतार के बिग दिया है दोस्तों डांस कर रहा लेट्स डांस

great memories, great memories. Tam Tam Bhojpuri song chalega. Pick a happy station far on Hindustani radio. वह प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ साहब यूसुफ भी बैठा हुआ है.

हाय हाय मेरे जान मेरे जान मेरे जान रवि सिंह एंड नादिया सिंह, दोनों की आवाज में आप ये चटनी मसाला सुनेंगे।

आपकी बार ग्रैमी अवार्ड विनिंग साउथ फ्रॉम साउथ अफ्रीका मेरियम मकेबा नेहरू सिविल सेंटर के बात है जब ये सुरीनाम देश आया और उसी समय पर एक बार बना था जिसे पारा में और लोग तुरंत उसका नाम रख दिया था मकेबा बार। तो मेरियम मकेबा का एक सॉन्ग है लाइफ, ये सॉन्ग पेश किया गया है पाटा पाटा।

0: एरियम मकेबा के बाद हिंदी बबलिंग मैशअप धीरज सक्सेना एंड नाथान शो टाइम शो टाइम शो टाइम दोस्तों
1: 6 million ways to die choose one

सीता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः हरिओम। एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग साथियों। कौन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों, स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर सा भरा हुआ प्यार, नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को, और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूँ आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णदत्त भगवान दिन, जिसे आप ढेर सारे श्रोता गुना आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम 13 मई 2020 का हसीन रात्रि का प्रोग्राम लेकर उपस्थित हुआ हूँ साथियों। ये अशोमी लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या काम कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि पेश है मैथिल फील प्लेजर के साथ। स्टूडियो की तरफ आते वक्त तापमान दैनाक्षर का तकरीबन 10 और 11 के दरमियान था, थोड़ा बहुत धूप भी निकला था। तो मोटर कार में हो या घर पे हो, काम कर रहे हो, आप तैयार हो जाए कुछ पुराने नगमे को सुनने को। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो इस्टेब्लिश्ड फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग चून है। हमसे पहले आप श्रोता उन्हें एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुना जो खास करके है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का द मैन विद गोल्डन वॉइस द वन एंड ओनली मैस्त्रो राजन द्वारका जी ने आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया। जिस तौर तरीके से भाई राजन आप श्रोताओं को सदियों से सेवा करते आ रहे हैं, यह उम्मीद है हमारे फूल टीम की तरफ से कि उनका पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। आज के लिए तहे दिल से धन्यवाद फूल टीम की तरफ से भाई राजन जी, और आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ रात्रि। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है, हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा, या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हो, और ये भी हो सकता है कि आप विवाह संस्कार की तैयारियों में भी लगे हो। जो भी खुशी के दिन आप सभी मना रहे हो, जश्न मना रहे हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयाँ ही बधाइयाँ, खुशियाँ ही खुशियाँ, प्यार मोहब्बत के साथ पेश है। और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएँ नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पे एक दुख का घड़ियान पड़ा है, आप एक मातम में हो, कमी में, तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है, मातम में शरीक है, और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को सहन शक्ति और शांति प्रदान करते रहें। हिल फिर स्टैरक्टिवाद से जो बीमार लाचार है आपके तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए। एनितिफरखेते बंधु, जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना, और हम लोगों के बारे में जरूर थोड़ा बहुत तो बातें शाते करते रहना। फनहार्थ बीच आप कामयाब हो तो हमारे फूल टीम की तरफ से आपको तहे दिल से बधाइयां हैं बधाइयां। एंड फॉर ऑल खा नेट सो डोर ब्रो ऑफ सीसा। और हो सकता है कि आप कल परसों या आज कामयाब नहीं हुए हो, तो चिंता के कोई बात नहीं है बंधु। दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास, भरोसा, यकीन, सेल्फ ट्रव और जोर तोर से बढ़ाते रहना, और थोड़ा
और जोर जोर से कोशिश करते रहना तो हो सकता है ना कि कामयाबी भी आपके कदमों में जल्द से जल्द दौड़ दौड़ कर आ सकते हैं। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी बंधु, तथा वो तो ओवरऑल क्लियर थे तय सब स्कोर ऑफ योर वर्क नेवर गिव अ ब्रदर एन सीसा सो लो बिलो बी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नेचुरली बुदंत फॉर हेट लाइस्टरन। इसमें परमेश्वर तुम्हारे फुल टीम की तरफ से सुस्वागतम फेन फकांसी ब्लाइफ लाइस्टर में आरफाना होन हिंदुस्तानी रेडियो यू गोना लाइक इट एंड दैट मीन इट ओके हैं। हो सकता है कि आप देश को छोड़ के विदेश यात्रा पे जा रहे हो या तो आप फकांसी पे हो, तो आपको भी एक फेन फकांसी तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को इंटरनेट के लहरों द्वारा ओपन फकांसी एड्रेस ओक ओपन टैबलेट स्मार्टफोन ऑफ लैपटॉप। तो आप भी सुन लिए हम लोगों को ऑप यू फकांसी एड्रेस सो बेंट यू एंड ब्लाइफ टू फन अलस ऑप द हुक्त फन यू फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दैट इज नेचुरली हमारे देन हांग शेर का द वन एंड ओनली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस। साथियों प्रोग्राम की शुरुआत मैं सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ आई डी फिल्म ललकार कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी क्या गा लो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते रहेंगे और सदा कहते ही रहेंगे क्या हैं हैव टू नॉट आउट एट लीव है ओक यू सेल्फ नथिंग इधर इन योर फैमिली वीरमान को लिखास कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है साथियों खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के साथ आप साप्ताहिक प्रोग्राम सुनेंगे संगीतकारों का दास्ता नाम कार्यक्रम खलिंग में एक गोत इस गोत गीत और गजल बीच में कुछ ज्ञान की बातें हैं शेर शायरी भी है। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 10:30 रात्रि तक चलेगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना। मैं तो यही आप सभी से कहूँगा साथियों और कहता रहूँगा कि हंसते रहो हंसाते रहो गाते रहो बजाते रहो जियो और जीने दो रफी साहब।

गालो मुस्कुरालो महफिल सजालो, हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत रवि साहब जी के मधुर आवाज के साथ। साथियों, घड़ी की तरफ देखता हूं तो तकरीबन 11 मिनट गुजर चुका है 8 बजकर। तो आज इस हसीन रात्रि का शुरुआत मैं करने वाला हूँ सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी के मधुर आवाज में। एड फिल्म कांच और हीरा रविंद्र जैन का लिखा हुआ और कंपोज किया हुआ ये ब्यूटीफुल गजल आप सुनिए और एंजॉय कीजिए।

beautiful song, a masterpiece of composing by Maestro Ravindra Jain ji, जैसे श्रोताओं को मालूम है कि नेत्रहीन था ये महान संगीतकार है, वस ब्लिंद खबोर ओक, और इतने महान महान काम किए हैं, खुद गाता था, खास करके पूरे रामायण भी कंपोज किया ये महान संगीतकार। प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ, सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रवि साहब जी को तो आप सुन चुके हैं, अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक ऐसा कलाकार जो सिर्फ रफ़ी साहब जी के मूर्ति बनाकर पूजा किया और उन्हीं के गाने गा गा कर आज द किंग ऑफ मेलोडी बन गया, इस ज़माने का द ग्रेट सिंगर मैस्त्रो सोनू निगम जी के ब्यूटीफुल आवाज़ में आप सुनिए ये अति सुंदर बयान, मेरा दर्द तुम ना समझ सके, फ्रॉम द मूवी बेवफा सनम।

wat hij rechtstreeks uit zijn hart maestro Sonu Nigam ji ke makhmali awaaz mein iti sundar bayan aap shrotaon ne suna uit de film Bewafa Sanam composed by maestro Nikhil Vinay aur alfazidha Payam Saidi ji ka हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है 23 मिनट गुजर चुका है साथियों 8 बजकर गीत और गजल ओथ इज गोल्ड संगीतकार का दास्तान नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अगला बयान नाइटिंगेल सुमन कल्याणपुर जी को लाते हैं प्रोग्राम में een mooi nummer uit 1960 geschreven door Gulzar or composed by Dattaram Watkarji Milke zunte je beautiful song, a truly beautiful maestro, Dattaram.

कौन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, 4 मिनट गुजर चुका है 8:30 बजकर, तो वक्त हो गया है ना कुछ ज्ञान के बातें हो जाए, तो जरा गौर फरमाएं। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ पढ़े लिखे लोगों, कुछ विद्वानों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने जिंदगी लीफ हथलीफ के बारे में, जिंदगानी के बारे में अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें लिखे हैं साथियों, जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। ये यशो उम्मीद लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे, तो जरा गौर फरमाए। अर्ज किया है श्री कॉन्फ्यूशियस जी ने, आई वॉज अनहेल बकेंद चीनीज फिलोसोफ एंड लिव्ड फ्रॉम 479 टू 551 फॉर क्रिस्टस। और कॉन्फ्यूशियस जी ने कहा है जिंदगी के बारे में यारो कुछ अति सुंदर सुंदर ज्ञान से भरी हुई बातें, तो जरा गौर फरमाए। अर्ज किया है कि bedekt de vleugels van een vogel met goud en hij zal zich niet meer in de lucht kunnen verheffen. Agimika Sri Confucius Ji ne, wie voor niets bang is, wordt door het gevaar verrast. Ik moet werkelijk de man nog ontmoeten die meer ziet in deugdzaamheid dan in een mooie vrouw. De mens heeft 3 wegen om verstandig te handelen. Ten eerste door na te denken, ten tweede door te imiteren en ten derde door ervaring. Dat laatste is het pijnlijkst, dus door ervaring. Wie het doel weet, voelt zich zeker. Wie zich zeker voelt, komt tot rust. Wie tot rust komt, kan vrede brengen. Wie vrede heeft, kan plannen maken. Wie een levensplan heeft, kan slagen. Een superieur mens handelt alvorens te spreken en spreekt daarna in overeenstemming met zijn daden. Men moet zich in de jeugd een stok snijden, zodat men er in de ouderdom op kan leunen. Nederigheid is de grondslag van alle deugden. De gedachten van de superieure mens is vertrouwd met rechtvaardigheid. De gedachten van de middelmatige mens is vertrouwd met opbrengst. De zekerste manier om bedrogen te worden is zich voor slimmer te houden dan anderen. Een hele goeie hoor. En de laatste van vanavond, Kaisri Confucius Jinegi. Overwin een probleem en houd er daarmee 100 op een afstand. Eentje om heel goed te onthouden dus. Overwin een probleem en houd er daarmee 100 op een afstand. तो भी आप कुछ ज्ञान के बातें सुना साथियों, जो जिंदगी ओवर हेट लाइफ के बारे में, और ये था एक महाज्ञानी चाइनीज फिलोसोफ श्री कॉन्फ्यूशियस जी के बातें आप सुने। ये शामिल लेकर इन बातों को मैं आप सभी तक पहुंचाया। इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ हम लोग सीखते ही रहेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। 1 मिनट यानी 21 मिनट रह गया है 9 बजने में, और आप चुन हैं आप ही का मन चाहा रेडियो स्टेशन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 13 मई 2020 का ये अति सुंदर प्रोग्राम, खास करके पुराने
नगमे और कुछ संगीतकारों, कुछ लेखकों के बारे में, कुछ गायकों के बारे में जो मैं जानता हूँ आप सभी से मैं बात देता हूँ। अगला बयान एक बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है साथियों, महान संगीतकार ओमकार प्रकाश नैयर जी का बनाया हुआ ये बहुत ही मीठा धुन, ओपी नैयर के नाम से हम लोग उसे ज्यादा जानते थे ना। और इन फन से इन फावरित संगठ स्वस्न तिलक सुरो का बादशाह रफी साहब जी, और ये नगमा जो फिल्म माँ के बच्चे जो रफी साहब ने गाया है, क्या बात है, है बस तुम एक्ट ऑप्शन बेस्ट और मेरा साइलेंट म्यूजिक इन स्लाखवेरक हास्ट है जो सेंट प्यूर स्टेम खाती हो जैसे सकुशेखर रफी साहब ऑप्शन बेस्ट सभी रफी साहब जी के पुजारियों के लिए।

Surakaba Chad, the King of Melody, Padma Shri Mohammed Rafi Sahib Ji, Hopes and Best, Jab Yaad Tumhare Hame Aa Ke Sataegi. Composed and arranged by Maestro O.P. Nayar Ji. Aid film Bin Maa Ke Bacche. अगला बयान एक और जबरदस्त गाने वाली पुराने जमाने की लाती है प्रोग्राम में हम लाते हैं दिखा जाए मुबारक बेगम जी का गाया हुआ अति सुंदर बयान लता जी ने भी ये नगमा कितने बार महफिलों में शोज में गाई है लेकिन मेरे ख्याल से ओरिजिनल एक फिल्म हमारी याद आएगी टाइटल सॉन्ग आप सुनेंगे केदारनाथ शर्मा का लिखा हुआ है अति सुंदर बयान कंपोज बाय मैस्ट्रो स्नेहल भटकर उस जमाने के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर मिलके सुनते हैं

Title song from the movie Hamariyad Aegi 1961. Us zamanek mashur gane wali Mubarak Begum ji ke beautiful awaz mein ti sundar bayan aap sun rahe the, composed by Nat Sharma aur Sneha Bhatkar. दस मिनट रह गया है साथियों, नौ बजने में. अगला बयान एक बहुत ही सुंदर द्वैत है, एड फिल्म हमारी याद आएगी. और लाते हैं प्रोग्राम में शुरू का बादशाह, द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी, सुमन कल्याणपुर जी के साथ मिलकर सुनाते हैं केदार शर्मा का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, कंपोज बाय स्नेहाल भटकर.

Beautiful song uit de film Maria de Aegi. Revisabel, Simon Kalyan Purjike Awasme, Tisundu Bayan Sundetea, composed by Snehal Bhatkar. De pehla adhyay hamare geet aur ghazal, old is gold. संगीत का रुकदासा नामक कार्यक्रम में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे, उसके बाद विज्ञापन के ओर चलेंगे। अति सुंदर बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक फिल्म गौरी 1968 सुरु का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रवि साहब जी एक बार फिर आप सभी के सेवा में। और अति सुंदर बयान धुन बनाया है महान संगीतकार श्री रवि शर्मा जी, मेयर बकैंत हाउस म्यूजिक डायरेक्टर रवि। मिलके सुनते हैं ग्रेट सॉन्ग, दिल में तुम्हारी अदाए ले गई, दिल मेरा तुम्हारी अदाए ले गई, रवि साहब।

तुम्हारी अदाए ले गई, क्या बात है। जबरदस्त सॉन्ग है फिल्म गौरी 1968 कंपोज बाय मास्टरो रवि, रवि साहब जी के ब्यूटीफुल आवाज में। तो साथियों अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं साथियों, कहीं जाना।

0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: हर काम के लिए हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2447। मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: हर काम के लिए हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2447। मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247. Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 3652 2447। मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 13 मई 2020 का ये हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एनाटोलिक वर्क्स वॉइस एंड गर्ल्स सोशलो बिलो बी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एनाटोलिक बदंत फॉर हेट लोइस्ट्रन। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, इश्तिहारे, और अगर आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने व्यापारी के बारे में ज़रूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना साथियों, तो कुछ ना कुछ ज़रूर हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। लंदलक एंड वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के लहर द्वारा किफायती सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना और मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायती सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलफमांड फ्रेडाइनस कंतोर यूरोप फॉलखंड टेलीफोन नंबर कंतोर 0765 63 22 67 47 और स्टूडियो कतार का नंबर है 0703 62 20 77 और स्टूडियो कतार का नंबर है 0703 62 20 77। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ नैचुरल दैट स्टार्ट bij ons voor jullie allemaal op de eerste plaats, hè? Jo bhi radio ka kaam ho na, chota ho ya bada ho, denk aan Fahun Hindustani Radio. U bent van harte welkom, hoor. इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना साथियों, Fahun Hindustani Radio के बारे में। और क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना, और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि एक बार फिर मैं कह देता हूँ, आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, आप लोग हैं तो हम लोग है तो ज़रूर हम लोगों के बारे में कुछ ना कुछ बातें शाते करते रहना, थोड़ा बहुत ढंढोड़ा भी पीट देना अगर हो सके तो। Bent u nog een lid van Fahun Hindustani Radio, to guzaris binti nibedan kiya ja raha hai, kya bhi jald se jald Fahun Hindustani Radio ka member bane, aur ko bhi banaye, kyunki aap logo ko to dher sare fayda hi fayda hai. En recent hebben we ook ons eigen karaoke team, waar heel veel omroepers live binnenkort voor jullie gaan zingen. Volg onze social media's en onze omroepers, dan hoort u heel gauw waar wij live voor u binnenkort gaan zingen. Hè? En natuurlijk bent u dan van harte welkom. अभी आकर इस छोटा सा मोटा सा जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार बन चुका है ना, आप भी आकर उसमें शामिल हो जाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करे तैनिस्ट कांतोर यूर अपने 70 365 22 47 40 एंड फ्रागे नार उनसे टीम लीडर द वन एंड ओनली मास्टर जॉनी नंबर वन। आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए। वरा के मुताबिक एक दम लेकर चलते हैं साथियों आप सभी को प्रोग्राम की तरफ। और देखा जाए तो बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म
नया जमाना तक, और उस फिल्म जो रिलीज किया गया था 1987 तक में धर्मेंद्र जी ने काम किया है, मलकाए हुस्न, लाचर सेन, नतीलक टूई द फ्रॉवर्ट से मलकाए हुस्न द ग्रेट हेमा मालिनी जी, अशोक कुमार जी इस फिल्म में काम किया और महमूद जी। ढेर सारे गाने बीते हुए अब तक मैं सुना चुका था आप सभी के। इस फिल्म का एक आखिरी गाना रह गया था फिल्म नया जमाना का आप सभी को सुनाने को, जो मैं आप सभी को डायरेक्ट सुनाने को जा रहा हूँ, प्रेयर में धर चुका हूँ। और देखा जाए आप, ये भी होता है यार।

गनवा के नाम है चंपा और चमेली, तो भाग गया गनवा फिर चंपा चल गया चमेली के खोजे। तो एक आखिरी बयान रह गया था फिल्म नया जमाना का सुनाने को, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे एस डी बर्मन जी का बनाया हुआ ये मीठा धुन, अल्फाज है आनंद बख्शी जी का कि ओ चंपा ओ चमेली। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

डस गई सुई क्या बात है, ओ चंपा ओ चमेली रे। भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। आखिरी बयान एड फिल्म नया जमाना ने कंपोज बाय एस डे बर्मन और अल्फाजे था आनंद बख्शी जी का। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। घड़ी की तरफ देखता हूं तो 18 मिनट गुजर चुका है 9 बजकर। अगला बयान देखा जाए साथियों तो सभी नगमे फिल्म नया जमाना का आप सुन चुके हैं। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक जबरदस्त सुपरहिट मूवी जो रिलीज किया गया था Also in Negative Ancient में, मेरा गांव मेरा देश। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी द ही मैन एंड द हिट मैन ऑफ कोर्स बहुत ही नाम कमाया था वर्ल्ड वाइड। तो फिल्म मेरा गांव मेरा देश में से आप नगमे सुनेंगे। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है मलकाय हुस्न द ग्रेट आशा परेख जी के साथ। फिलियन रोल में अदा किया है श्री विनोद खन्ना जी, जयंत जी और लक्ष्मी छाया जी इस फिल्म में भी काम किए हैं। संगीत दिया है महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और अल्फाजे एक बार फिर द ग्रेट आनंद।

बख्शी जी का। तो एक जबरदस्त सॉन्ग आप सुनने वाले हैं साथियों, एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे कि सोना ले जा रे चांदी ले जा रे। मिलके सुनते हैं ये अति सुंदर बयान कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

क्या बात है, जबरदस्त सॉन्ग है एडू फिल्म मेरा गांव मेरा देश आया आया अतरिया पे। एक बार फिर लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, कंपोज बाय माएस्ट्रोस लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, और फिल नगमे आप सुन रहे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर द ही मैन द हिट मैन फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री द ग्रेट धर्मेंद्र जी ने काम किए हैं। और हम पहुंच चुके हैं फिल्म मेरा गांव मेरा देश तक जो रिलीज किया गया था इन 1986 में। अगला बयान कुछ कहता है ये सावन, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, एक दिल को छू लेने वाला नगमा सुनाने को जा रही है आप सभी को भारत रत्न लता जी में थार प्रख्त होनिंग स्टेम।

कुछ कहता है ये सावन, अति सुंदर बयान एड फिल्म मेरा गांव मेरा देश। एक बार फिर से आप सुन रहे थे रफी साहब जी और लता जी के आवाजों में अति सुंदर बयान, कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। 4 मिनट गुजर चुका है साथियों, 9:30 बजकर तो वक्त हो गया है कुछ शेर शायरी भी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। उर्स कुछ अर्ज किया है, नए नए भेजे है भाई भूपेंद्र जी, मेरा यारों का यार डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई से थी। अर्ज किया है यारों की बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते, बादशाह के गली में आके उसका पता नहीं पूछते। गुलामों के झुके हुए सर, गुलामों के झुके हुए सर खुद ब खुद रास्ता बता देते हैं। ये एक मजेदार शेर है और साथ ही साथ कुछ ज्ञान भी है। एक लड़के एक लड़की के बारे में जाती है ये शेर। लड़का बोला लड़की से, आई लव यू पहली नजर में ही तुम्हारा आशिक बन गया हूं, डू यू लव मी? तो लड़की ने बोली मैं तुम्हें एक सवाल पूछती हूं, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगी। लड़का मुस्कुराता है और चुपचाप जाने लगता है। लड़की ने पूछी क्या हुआ, जवाब नहीं चाहिए? तो फिर लड़का ने बोली पलट कर कहता है लड़का, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, जीत में मिला हुआ इनाम नहीं। ये आप क्या बात है? मैंने भी बदल दिए अपने जिंदगी की उसूल। क्या बात है भाई, क्यों? मैंने भी बदल दिए अपने जिंदगी के उसूल, अब जो याद करेगा मुझे, अब जो याद करेगा वो याद ही रहेगा। सॉफ्ट एटीट्यूड ऑलवेज क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, सो कीप सॉफ्टनेस इन योर एटीट्यूड एंड मेक लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशंस। तेरा ये एटीट्यूड 2 दिन की कहानी है, तेरा ये एटीट्यूड तो 2 दिन की कहानी है, मेरा ये एटीट्यूड बचपन से खानदानी है। क्या गुरूर है ये शेर में भाई। अगर तू ये सोचती है तेरी खूबसूरती में दम है, अगर तू सोचती है तेरी खूबसूरती में दम है, पगली लोग भी तुझे इसलिए देखते हैं क्योंकि तेरे आशिक हम हैं। ये था कुछ शेर्स एटीट्यूड खदराख के बारे में। अगला बयान फ्रॉम द मूवी मेरा गांव मेरा देश 1971। एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनेंगे ये अति सुंदर बयान, अपनी प्रेम कहानियां।

अपनी प्रेम कहानियां, अपनी प्रेम की कहानियां किस किस को सुनाऊं। अगर फिल्म मेरा गांव मेरा देश नहीं थी एनन सीफंतख कंपोज बाय लक्ष्मीकांत प्यारे लाओ, गेस्क्रीफ डोर अनंत बख्शी और गाई हैं आप सभी के लिए भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी। 15 मिनट रह गया है साथियों 10 बजने में और आप चुन हैं आप ही का हैप्पी हैप्पी स्टेशन पर हमारे धनहाशर का फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर 24 आवर्स एट योर सर्विस मी गुरु। अगला बयान आखिरी बयान है जो फिल्म मेरा गांव मेरा देश और एक बार फिर लता मंगेशकर जी का गाया हुआ ये सुपर हिट मेगा हिट सॉन्ग। उस जमाने में तो ये गाना बहुत ही हलचल मचा दी थी तक में। मिलकर सुनते हैं ये जबरदस्त सॉन्ग खरीफ दौर आनंद बख्शी के कॉम्पोनियर दौर लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और जिस खूबी जिस अदाएं से लता जी ने ये नगमा को गाई है क्या बात है कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए बोल बोई है तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। लता जी ऑप्शन बेस्ट A great song, special आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Beautiful song, Jabber Just Evergreen song. आप श्रोताओं को सुनाई भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, एड फिल्म मेरा गांव मेरा देश, आखिरी सॉन्ग एड फिल्म, गकंपोनेर्ड दोर महान संगीतकार जोड़ी द ग्रेट लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और खसखरीफ़ दोर आनंद बख्शी नतीलक। 8 मिनट बाकी है साथियों 10 बजने में, तो सभी नगमा आप सभी को मैं सुना चुका हूं एड फिल्म मेरा गांव मेरा देश का। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक जबरदस्त सुपर हिट मेघा हिट मैं कहना चाहता हूं फिल्म जो रिलीज किया गया था इन 1927 तक में, फिल्म सीता और गीता। और इस फिल्म में धर्मेंद्र साहब जी ने काम किया है डबल रोल गस्पेल्ट मिथ सेन लादर फ्राउ गवॉर्ड मलकाए हुस्न मेलोडी क्वीन उस जमाने के द ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी के साथ। और देखा जाए इस फिल्म में भी संजीव कुमार जी का एक जबरदस्त रोल है। महान संगीतकार राहुल बर्मन जी का सभी बनाया हुआ धुने हैं और संगीत दिया है आर डी बर्मन जी ने, सभी गाने लिखा है आनंद बख्शी जी ने।

0: आता जाता रहता है ना। प्रोग्राम आगे जारी है, तो जैसे मैं आरसीबी से अभी कह चुका हूं, फिल्म सीता और गीता एक जबरदस्त मूवी था और सभी गाने इस फिल्म के सुपरहिट साबित हुए। महान संगीतकार आर डी बर्मन के संगीत आप सुनिए, एक अति सुंदर बयान के साथ, हवा के साथ, क्या बात है। उस जमाने में इतने चला ये नगमा और रोल्स हादसे पर अख्तियार कर इस रहा था संजीव कुमार और हेमा मालिनी, तो ढेर मिला उस जमाने में, गैला भी रोल्स हादसे खोजे किरपानी में मना पाए रहा सब बस त्याग कर रहा है कार्ड को। हवा के साथ साथ और आगे सुनिए संगीतकारों का बादशाह और शहंशाह डगड़ेट किशोर दा और मेलोडी क्वीन आशा भोसले जी के आवाजों में हवा के साथ साथ।
1: अरे

0: Beautiful song, wonderful song, Aproxen, red hair uit de film. Tikadai. Film Sita aur Gita mein se ye ti sundar bayan aap shrotaon ne suna. Kya awaze hai ye dono mahan gaane walon ka jo hamare Bollywood film industry ka shaan aur shaukat the na. The great Kishore Da aur Asha Bhosle ji. पूरे 10 का वक्त हो चुका है साथियों, तो अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं, कहीं जाना मत।
1: लाइव वनuit onze हाईटेक स्टूडियो इन Den Haag,

रहा हूँ कि हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुँचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों निकलिए तार कीजिए 9735 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

पावन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, सो लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतुलक विदाउट फॉर हेट लॉयस्टरन। जो भी रेडियो का काम हो, डेंक अनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट से डाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार्ट बे ऑन्स ऑफ द एस्ट प्लांट्स। खास फरमाइश हो, जरूरी खबरें हो, इश्तिहारे हो, डेंक अनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। Bent you noch geen lid van Fahun Hindustani Radio, to guzarish bent you niveden kia ja raha hai ki aap bhi jald se jald hum logo ka member bane aur roko bhi banaye, aapko to dher sare fayda hi fayda hai. En recent hebben we ook onze eigen karaoke sang club waar heel veel omroepers van Fahun Hindustani Radio live aan het zingen zijn. Volg onze social media en onze omroepers, dan hoort u zeer zeker wanneer wij binnenkort voor u live gaan zingen. Al abhi aakar is chota sa mota sa jo Fahun Hindustani Radio ka parivar bante ja raha hai, abhi aakar usme shamil ho jaye. सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अब 07-365-2247 एंड फ्राग नार ओन से टीम लाइडर द वन एंड ओनली माएस्ट्रो जॉनी नंबर वन। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में, क्योंकि अगर आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वरक के मुताबिक एक ही दम बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। 11 मिनट गुजर चुका है 10 बजकर। अगला बयान एक फिल्म सीता और गीता 1972 कंपोज बाय मास्टर आरडी बर्मन, और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को पद्म भूषण मन्ना डे, भारत रत्न लता मंगेशकर जी, किशोर दा और आशा भोसले जी, ये चारों ने मिलकर ये अति सुंदर बयान को गाए हैं। कोई लड़की मुझे कल रात सपनों में मिली, क्या बात है। वो फिल्म भर में गाने में ये गाना मेरे ख्याल से लता जी और किशोर दा।

कोई लड़की मुझे कल रात में सपनों में मिली, फ्रॉम द मूवी सीता और गीता, हसीन कपूर, जड़ किशोर दा और लता जी की आवाज में थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। 17 मिनट गुजरने वाला है 10 बजकर साथियों, तो कुछ आखिरी शेयर्स हो जाए हमारे आज के हिस्से के प्रोग्राम में हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है साथियों कि आज उसने एक बात कह के मुझे रुला दिया, आज उसने एक बात कह के मुझे रुला दिया, जब दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मोहब्बत क्यों की। वो दिन नहीं वो रात नहीं, वो दिन दिन नहीं वो रात रात नहीं, वो पल पल नहीं जिस पल आपकी बात नहीं, आपकी यादों से मौत भी हमें अलग कर सके, मौत की भी इतनी वक्त नहीं। Why do you follow me every time, say the girl. The boys say, well, when I was a kid, my parents always used to say, keep following your dreams until you meet them. इसीलिए लहरों को शांत देख कर ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की थानी नहीं है। आखिरी शेर साथियों आज के मेरे हिस्से को का प्रोग्राम में, जब चाहा कि यार अब तू पढ़ लूं तभी नींद आ जाती है, जब चाहा कत्ल कर दूं अपने इरादों का तभी पता नहीं कहां से हिम्मत आ जाती है। ये था कुछ आखिरी शेर। अगला बयान एक अति सुंदर सॉन्ग है 1926 सीता और गीता में से निकाला हूं, और गाने वाला है पद्म भूषण मन्ना डे, साथ दे रही है आशा जी आडी बर्मन के सांस पर। खिलाड़ी है भैया कोई

क्या बात है, अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एड फिल्म सीता और गीता gekoppeld met een andere song, gelukkig op tijd ontdekt। अगला बयान और ये भी साथ ही साथ आज के मेरे हिस्से का आखिरी बयान होगा और एक बार फिर ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं के नाम एक बार फिर से

साथियों, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है, तो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में आखिरी बयान आप सुनेंगे। एड फिल्म सीता और गीता एक बार फिर पद्म भूषण मन्ना डे जी के ब्यूटीफुल आवाज में, अभी तो हाथ में जाम है, कंपोज एंड अरेंज्ड बाय आर डी बर्मन।

काम है, क्या बात है। पद्म भूषण मन्नाडे जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एक फिल्म सीता और गीता ने हिंदी तो सही बता। कंपोज बाय मास्टर आर डी बर्मन और अल्फा से था द ग्रेट आनंद बख्शी जी का। तो साथियों, धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को। ये यश उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ साथियों की जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे मैं आप श्रोताओं से फिर मिलने वाला हूँ सरनामी संगीत लेकर, और उसके बाद कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो मुझे आपसे भी इजाजत दे हमारे बात आप कुछ नगमे सुनेंगे जो भाई रॉय हम लोगों का टीम लीडर मास्टर जॉनी नंबर वन आप सभी को सुनाएंगे, और उसके बाद आप सुनेंगे विज्ञापन। विज्ञापन के बाद आप सुनेंगे अनहरहारिंग फनत फमिरख प्रेजेंटेड न्यूज डोर ऑन्स एयरवार्ड कोलीखा कॉरेस्पॉन्डेंट एंड जर्नलिस्ट फनफा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो डॉन एंड ओनली बड़का भैया मास्टरो रोमियो होस्टी, और उसके बाद हम ऑफ द नाइट प्रोग्रामिंग। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, और हमें आप सभी इजाजत दे। जाते जाते तो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ, और आज द ग्रेट जगजीत सिंह जी के याद में

दोस्तों और अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और हमारा प्रोग्राम पुराने नंबरों की बहार प्रोग्राम यहाँ से चलते हैं और अपना पुराने गाने की ओर हम बढ़ते हैं और चलते फिल्म अनमोल की ओर देखती नीखने शस्त्र का भीगा भीगा बदन और भीगा भीगा बदन और मेरा चंदन की तरह महकते हैं फिल्म अनमोल मोती का ये गाना दोस्तों आओ मिलकर हम सुना जाए।

और क्या दोस्तों, इस गाना बहुत पुराना गाना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, और ये छोटी सी मुलाकात जो है, और ये विजयंती माला उत्तम कुमार का ये गाना है, और ये पुराना गाना हम आपके लिए यहाँ से चलाते हैं।

और छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, और प्यार में क्या क्या हो जाता भैया, छोटी सी मुलाकात में प्यार हो जाए और बड़े मुलाकात में मार हो जाते हैं, होता है ना। और हम प्यार का सौदा कर बैठे विजयंती माला और लता मंगेशकर फिल्म जिंदगी, जिंदगी का ये गाना है निखिल होंदत और फिरन शस्तक का, जिसमें राजेंद्र कुमार राजकुमार विजयंती माला जीवन महमूद हेलेन ने और इसमें काम किया है हमारे दोस्तों।

हम प्यार के सौदा करते हैं और एक बार दोस्तों और प्रकाश और ये गाना है ओ राधा तेरे बिना और ये मस्त भरी गाना है फिल्म राधा का सनम गोविंदा जुही चावला ने इसमें काम किया है और आओ मिलके इस गाना को आज हम सुना जाए ये इसमें कौन सा मजा है दोस्तों।

से अपना यही है। ओ राधा तेरे बिना क्या क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों और ये गाना जो हम आपके लिए अब चलाते हैं, ये भी एक बहुत पुराना गाना है, कोई प्यार की देखे जादूगरी। ये भी एक फिल्म है जो अभी हमारा पैदाइश नहीं हुआ दोस्तों, लेकिन जितनी पुराना ही गाना है उतने मजा उसमें है। हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे प्यारे लिस्टनर्स, आओ मिलके और सुना जाए ये क्या है।

अहम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो वाहन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8 फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

सुनने वालों, मैं आप सबको स्वप्न विज्ञान में से कुछ वृत्तांत सुना रही हूँ, यानी सपने, कि जो लोगों ने सपने देखे और उनको सपने आए उनका क्या महत्व था। पिता द्वारा पुत्रों का कत्ल। मैनचेस्टर शहर में एक महिला ने स्वप्न में देखा कि उसका पति उसके दो बच्चों को चेस्टर सिटी के भयानक खंडहर में जान से मार रहा है। वह चिल्लाकर नींद से जाग गई और पुलिस को साथ लेकर खंडहर ढूंढ निकाला। तलाश के बाद वहां से बच्चों की हड्डियां प्राप्त होने पर पति को जेल हो गई।

अब मैं एक और वृत्तांत आपके लिए रखती हूँ। मृतक पुत्र के जलने की चेतावनी। एक दिन रात्रि में सिंह मांड फ्राइड के एक मित्र के बेटे का देहांत हो गया। सुबह अंतिम संस्कार हेतु रखे शव की चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी और पहरेदार को वहां छोड़कर पिता दूसरे कमरे में सोने के लिए चले गए, जिसने एक स्वप्न में देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र उसके पास खड़ा हुआ कह रहा है, क्या मुझे ऐसे ही जलने दोगे? पिता ने जागकर बाहर आकर देखा तो एक मोमबत्ती गिरने से शव का कान जलने लगा था। थोड़ा विलंब होता तो शव के साथ वह मकान भी जल जाता।

सुनने वालों, अब मैं एक और आपको सपने के बारे में बताती हूँ जो टीपू सुल्तान को आया। टीपू सुल्तान मुगल बादशाह हुए हैं, एक सुल्तान हुए हैं बहुत बड़े, टीपू सुल्तान तथा कांच की खान। टीपू सुल्तान ने रात में देखा कि एक बूढ़ा कांच का एक पत्थर लेकर उसके पास आया और बोला, सेलन के पास जो पहाड़ है वहाँ कांच की खान है, यह कांच मैं वहीं से लाया हूँ। इस तरह सुनते ही उसकी नींद खुल गई और वहाँ कांच की खान मिल गई।

सुनने वालों, एक डॉक्टर फिशर हुए हैं, वो कहते हैं कि एक स्थान पर प्रेत आत्मा का होना, जब एक स्त्री एक विशेष स्थान पर सोती थी तो उसे एहसास होता था कि उस पर कोई झपटा रहा है। तलाश करने पर पता चला कि यह स्त्री जिस स्थान पर सोती थी उस स्थान पर एक मनुष्य ने एक नवयुवना का गला घोंटकर खून किया था। स्थान विशेष में मानवीय विद्युत कंपन लंबे समय तक रहते हैं। शमशान की भयानकता एवं देव मंदिर की पवित्रता उसकी साक्षी होती है।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ भगवान महावीर पर 14 स्वप्नों का प्रभाव। भगवान महावीर बहुत बड़े भगवान हुए हैं, उनको 14 सपने आए। भगवान महावीर के जन्म के पहले रानी त्रिशाला ने 14 स्वप्न देखे थे। पहले में एरावत हाथी, दूसरे में सफ़ेद बैल, तीसरे में शेर, चौथे में लक्ष्मी जी, पांचवे में फूलों की माला, छठे में पूरा चांद, सातवें में सूर्य दर्शन, आठवें में पानी से भरा कलश, नौवें में नील सरोवर, दसवें में बहता सागर, ग्यारहवें में सिंहासन, बारहवें में देवव्रत, तेरहवें में रतन राशि, चौदहवें में धुआं मुक्त अग्नि। भगवान महावीर का जीवन इन 14 स्वप्नों के अनुकूल स्वप्न के हर प्रतीक के अनुसार इस प्रकार था। हाथी धैर्य मर्यादा, एक बड़प्पन का प्रतीक, महान धर्मात्मा, अनंत शक्तियों का स्वामी, मोक्ष प्राप्त करने वाला, अनासक्त ज्ञानी, सुख

ये है फाहून हिंदुस्तानी रेडियो, आप सब सुन रहे हैं फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, पिछले बार मैंने आप सबको फड़कने के बारे में बताया था कि अंग फड़कते हैं तो उन सब का क्या मतलब है, जैसे सिर का फड़कना, नेत्रों का फड़कना आदि आदि। तो आज हम चलिए कंधों का फड़कना, कि जब कंधे फड़कते हैं तो उसमें से क्या क्या लाभ होता है या हानि होती है। कंधों का फड़कना, जब दायां कंधा फड़कता है तो बहुत शुभ, शीघ्र ही धन, वैभव और सम्मान और बिछड़े भाई से मिलन होता है। और जब बायां कंधा फड़कता है तो रक्त या वात संबंधी रोग होते हैं। पीठ का फड़कना, जब दाईं तरफ पीठ फड़कती है तो राज सम्मान मिलता है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। और जब बाईं तरफ पीठ फड़कती है तो अशुभ है, मुकदमे में लड़ाई में हार होती है। जब ऊपरी भाग का कंधा फड़कता है तो धन की प्राप्ति होती है। अब निचला कंधा फड़कता है तब बहुत से अनुयायी काम होते हैं।

घुटनों का फड़कना। सुनने वालों, हमारे घुटने जो हैं वो भी कभी भी फड़कने लग जाते हैं। जब दायां घुटना फड़कता है तो स्वर्ण प्राप्ति होती है, जब दाएं का निचला भाग फड़कता है तो शत्रु का सामना करना पड़ता है, और बाएं का निचला भाग फड़कता है तो कार्य पूर्ण होते हैं। सुनने वालों,

गर्दन का फड़कना, सुनने वालों हमारी जो गर्दन है जिसे आप लोग नेक कहते हैं वो भी कभी कभी फड़कती है, तो गर्दन के फड़कने से विदेश यात्रा उपरांत धन कमाकर कुशलतापूर्वक लौट आता है। कान का फड़कना, सुनने वालों हम सब के कान भी कभी कभी फड़कते हैं, तो उसका भी कोई ना कोई मतलब होता है। जब हम लोगों का दायां कान फड़कता है तो हम लोगों को शुभ समाचार मिलते हैं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब हम लोगों का बायां कान फड़कता है तो प्रियजन से मिलन मेल होता है। जब हमारे कान का पिछला भाग फड़कता है तो मित्र शत्रुवाद व्यवहार करते हैं।

बोहों का फड़कना, सुनने वाले बोहे कहते हैं वैन ब्रो को, वो भी हमारी कभी भी फड़कती हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि वो कब फड़कती हैं। जब हम लोगों की दाई वैन ब्रो फड़कती है तो हमें इज्जत शोहरत मिलती है, जब भाई फड़कती है तो मित्र मिलन, अपने मित्रों से मिलाप होता है। गाल का फड़कना, जब गाल भी फड़कते हैं सुनने वालों, जब हमारा दाया गाल फड़कता है तो विलंब से स्वास्थ्य लाभ की स्वास्थ्य में लाभ हमें देरी से मिलता है, और जब बाया गाल फड़कता है तो काम में विघ्न बाधा तथा चिंताजनक समाचार, कन्या का जन्म या कन्या से शुभ समाचार मिलते हैं। अब जो दोनों समान फड़कते हैं तो अतुल धन की प्राप्ति होती है, तो हम लोगों को ढेर सारा धन प्राप्त होता है सुनने वालों।

ये है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सब सुन रहे हैं स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि नाक का फड़कना, सुनने वालों जब हम लोगों का नाक फड़कता है तो हमें क्या क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते कि हम लोगों का नाक कब फड़कता है। व्यवसाय की वृद्धि होती है, किसी से झगड़ा होता है, आने वाले संकट रोग की सूचना मिलती है, अनेक प्रकार से सुख मिलते हैं।

वालों, अपने शरीर के सभी अंग फड़कते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वो कब फड़कते हैं। अब मैं आपको सुनाती हूँ मुंह का फड़कना। हम लोग के मुंह भी फड़कते हैं सुनने वालों। समाचार मिलता है, सुखों की प्राप्ति होती है, सम्मान की प्राप्ति होती है। होंठ का फड़कना, जब हम लोगों के होंठ फड़कते हैं तब हमें सुख समाचार मिलता है, शत्रुओं से समझौता होता है, हितैषी का आगमन होता है कि जो हमारा कोई अपना जानने पहचानने वाला है वो हमारे घर पर आते हैं।

सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि भोजन करते समय कौन कौन से शगुन होते हैं और उसमें से कौन से अच्छे होते हैं, कौन से बुरे होते हैं। यदि भोजन करते समय सामने ही बिल्ली आ जाए तो शुभ नहीं होता, कुत्ते का रोना सुनाई दे तो अधिक अशुभ होता है। जब हम भोजन कर रहे हैं और कुत्ता रोता है तो वो शुभ नहीं होता, सुनने वालों अशुभ होता है, ग्रह क्लेश उपस्थित हो जाए, अन्न संकट है, रुदान का शब्द सुनाई दे। जब कोई रोता है तो स्वास्थ्य की हानि होती है, सुनने वालों उबकाई आने लगे। जब हमें खाना खाते खाते हम उबासी लेते हैं तो हमें अधिक नहीं खाना चाहिए, तो उसका मतलब है पेट भर गया हमारा। कुत्ता भौंकने लगे, अनाज की चोरी होती है। जब कुत्ता भौंकने लग जाता है तो अनाज चोरी होने का डर रहता है। काली चिड़िया शरीर पर बैठ जाए, सामान्य जब काली चिड़िया कभी शरीर पर बैठ जाए तो वो ना हानि है ना लाभ है, सुनने वालों। पकती रोटी अधिक जल जाए, अन्न नष्ट हो। जब हमारी रोटी बनाते बनाते ज़्यादा जल जाती है तो हमारे अन्न का नाश होता है, सुनने वालों।

सुनने वालों, जब हम लोग घर पर भोजन करते हैं तो क्या हमें जूते पहनकर भोजन करना चाहिए कि जूता खोलकर भोजन करना चाहिए कि जूता उतार के भोजन करना चाहिए? अब मैं थोड़ा सा वो आपको बताती हूँ सुनने वालों। जब व्यक्ति भोजन करता है तो अपने शरीर में एक विशेष ऊष्मा को संचित करता है। भोजन करते समय जो कैलोरी या ऊष्मा मुंह के द्वारा शरीर में जाती है तो उसमें एक विशेष विद्युत का निर्माण होता है। यदि इस विद्युत का पृथ्वी से संबंध हो जाता है तो उसे पूरा परिपथ मिल जाता है और वह जो भी भोजन करता है उससे पूरी शक्ति प्राप्त होती है। जब हम नंगे पांव बैठते हैं तो हमारे पैर पृथ्वी से स्पर्श करते हैं, फलस्वरूप हमें आर्थिक मिलती रहती है। परंतु जूते पहने होने पर चमड़ा विद्युत अवरोधक बन जाता है और भोजन करते समय जो ऊर्जा या विद्युत पैदा होती है उसे अर्थ ना मिलने के कारण उसका प्रवाह विपरीत हो जाता है और जो भोजन किया जाता है वह विषैला बनकर शरीर को हानि पहुंचाता है। इस प्रकार जूते पहनकर भोजन करने वालों को गैस, कब्ज आदि रोगों की शिकायत बनी रहती है।

सुनने वालों, ये स्वप्न विज्ञान है। मैं आप सबको सुना रही हूँ सपनों की दुनिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हम रात को सोने जाते हैं तो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं उन सब का क्या मतलब है, कि वो शुभ हैं कि अशुभ हैं। सुनने वालों, जब हम रात्रि में सोने जाते हैं तो जब हम लोगों को शंख ध्वनि सुनाई दे, बैल की हुंकार सुनाई दे, वीणा का शब्द सुनाई दे, तो उन सब का शुभ मतलब है कि वो सब अच्छी चीज़ें हैं। जब हम अपने बेड पर बैठते हैं या चारपाई पर बैठते हैं, अगर चूहा दिखाई दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, घर में प्रसन्नता का वातावरण हो तो वो भी लाभकारी है। जब सब घर के सदस्य हंसते हैं और हमें लाभ मिलता है, हम लोगों को अच्छी नींद आती है। सुनने वालों, अगर पत्नी की आंख में आंसू हो तो वो अपशकुन है। गीदड़ बोले या कुत्ता भौंके तो चोरी का भय रहता है। रात को जब हम सोते हैं सुनने वालों, अगर कुत्ता भौंके तो उससे हमें चोरी का भय रहता है। बिल्ली या कुत्ता लेटा हो तो अच्छा नहीं होता। घर की पालतू गाय सहसा रो पड़े तो वो अपशकुन होता है। अगर घर में हमारी गायें हैं तो अगर वो रो पड़े तो वो अपशकुन कहलाता है। पलंग पर छिपकली पांव की तरफ भाग जाए तो वो शुभ है। कोई पान या सुपारी लाकर दे तो वो भी शुभ है। सुनने वालों, कोई सामने छींक दे, अच्छा शकुन नहीं है।

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: శిఖరతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సంప్రభ నిర్విధినం కురు మే దేవ సర్వకార్యషు సర్వదా రుబ్రు మిల్నే కా మౌకా నహీ పా రహా అథ శబ్దో సే అప్నో కో నమన్ కర్ లేతా హూం ప్రత్యేక వ్యక్తి కిసి న కిసి రూప్ మే శ్రేష్ఠ హోతా హై ఇసిలియే ఆప్కీ శ్రేష్ఠతా కో హృదయ సే నమస్కార్ కర్తా హూం ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। हमारे साथ आज देने वाले हैं चंद्रा जी और हमारे पैनल के पीछे बैठे हुए हैं राजेंद्र सिंह जी। कार्यक्रम जो यहाँ से और प्रारंभ होता है
1: संजय जी, और आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा होने वाला है। और कार्यक्रम जो है श्री गणेश कि एक दंत होने का वृतांत रहेगा कि एक दंत कैसे हुए वृतांत, उस प्रकार में पूरी बात रहेगी। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, यानी राजेंद्र सिंह का नमस्कार। सुनते हैं आगे संड्रा जी क्या कहना चाहती है।
2: हेलो सुनने वालों, आप सबको मेरा नमस्कार।
0: राजेंद्र जी, हर सप्ताह की तरह जो हम गीत रखते हैं कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डड़े, और वो गीत को हम चला देते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को भरे। तो राम जी सबका बेड़ा पार ही करते हैं, किसी का मन भी उदास नहीं रहता है। जब ये गाना हम चला लेते हैं, ये भजन जब सुनते हैं सब लोग, तो किसी का मन भी उदास नहीं रहता। तो क्यों ना संजय जी हम आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़े।
1: एकदम एकदम राजेंद्र जी, आगे के कार्यक्रम क्यों

0: तो आज हम सबको सुनना है, सुनते रहना, क्योंकि ये संदेश जो आज है कि गणेश जी का एक दंत, उसके बारे में काफ़ी जानकारी भाई राजेंद्र जी जो लेकर यहाँ उपस्थित है, और हमारे विशेषज्ञों लोग जो इसे खोज खोज करके हम सब के लिए रखते रहते हैं, तो हम सब अभी उस ओर, राजेंद्र जी क्यों ना हम सब छलांग लगा देते हैं।
1: हाँ जरूर। जब जमदग्नि पुत्र ने 21 बार पृथ्वी को अपने परसु, यानी परसु मतलब
0: परसु माने तो
1: फरसा,
0: फरसा
1: मात्र से क्षत्रिय भीन किया था, तभी केवल एक परसु से क्षत्रिय भीन किया था 21 बार पृथ्वी को, तभी भगवान शंकर ने उनका नाम परशुराम रख दिया। उस समय उनके ऊपर देवता, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, किन्नर एवं देवियों आदि ने पुष्प की वर्षा की। हर्ष के कारण स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी और सर्वत्र हरिनाम का कीर्तन होने लगा। तदुपरांत परशुराम कृत यज्ञों से यह समस्त धरती तल पूर्ण रूप से तृप्त एवं संपन्न हो गई। उसके बाद परशुराम जी ने भगवान आशुतोष एवं जगजननी पार्वती जी के दर्शन की इच्छा की और वे शीघ्र ही कैलाश शिखर पर पहुँचे। उस समय स्वयं श्री गणेश्वर द्वार पर विद्यमान थे। परशुराम ने उनके पास जाकर कहा, भ्राता, मैं इस समय परम प्रभु और मातेश्वरी उमा के दर्शन करना चाहता हूँ। मैंने वसुंधरा को लीला पूर्वक ही क्षत्रिय भीन कर दिया है। उसमें कार्तवीर्या और सुचंद्र जैसे महाकर पराक्रमी और समर सिद्ध भूपाल मारे जा चुके हैं। यह सब कार्य शिव की कृपा से ही पूर्ण हुआ है, इसलिए भी उनके दर्शन करना बहुत आवश्यक है। हे भ्राता, हे गणेश्वर, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते? देखो, मैंने उन्हीं परमपिता शिवजी से विविध विद्याओं को प्राप्त किया है और दुर्लभ शास्त्रों को अध्ययन करता हुआ उन्हीं के सानिध्य में पारंगत हुआ हूँ। उन्हीं के जगतनाथ और अपने गुरुदेव भगवान शंकर के दर्शनार्थ मैं अंतापुर जाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे वहाँ जाने की आज्ञा दीजिए। परशुराम जी की बात सुनकर गणेश्वर जी ने कहा कि आपको अभी यहीं ठहरना चाहिए, शीघ्रता में कभी कोई कार्य नहीं बनता। फिर नीति भी यही कहती है कि देवता, गुरु और राजा के सानिध्य में जाने से पूर्व उनकी अनुमति अवश्य प्राप्त कर ले, जब वे दर्शन देना स्वीकार कर ले तभी वहाँ जाएं।
0: तो राजेंद्र जी, ये है कि अभी परशुराम जी और वृतांत चल रहा है, अभी हम सब एक दंत के ओर बढ़ना।
1: हाँ,
0: तो क्यों ना हम एक गीत चला देते हैं।
1: हाँ क्यों नहीं, जरूर।
0: क्योंकि शांता जी ने अपने पिटारा सद आज दिखिताल भर के और हम सब के लिए भेज दिए हैं।
1: हाँ,
0: तो देखते हैं, क्योंकि गीत में भी ये बात हो जाता है राजेंद्र जी, कभी काल के हम सब यहाँ पर से भी गीत चला देते हैं जिनका संदेश कुछ और होता है और बाद में पछताना होता है, पर शांता जी हर बार इतना समय निकाल करके सभी गीतों पे और ध्यान देते हैं, तो देखते हैं कौन सा गीत इस बार शांता जी हम सब के लिए तैयार करके रखे।
1: हाँ जरूर।

0: जय देव गणेश जी की इतनी सुंदर प्रस्तुति हुई कि सब लोगों का मन हर्षित और उल्लासित हो गया, खासकर सांड्रा जी का। और क्यों ना आगे बढ़ा जाए,
1: एकदम एकदम राजेंद्र जी आगे बढ़ा जाए, क्योंकि हमें भी ये बात को है कि एक दंत गणेश जी का क्यों, और अब सुनेंगे तो फिर पता चलेगा।
0: हाँ, फिर उनकी अनुमति, जैसे उन्होंने बोला कि अभी आप थोड़ा रुक जाइए, तो फिर मुनिनाथ बोले कि आप तो स्वयं नित्यज्ञ और धर्मज्ञ है, आपको तो अभी द्वार पर रुकना ही चाहिए। देखो मेरे नियुक्ति युक्त वचन सुनो। गणेश जी ने परशुराम जी को बोला कि अभी आप सुनो, मेरे कुछ वचन भी सुनो, नियुक्ति युक्त नीति युक्त, यानी कि कुछ सही बातें हैं। रहस्य स्थल में अपनी पत्नी के साथ विद्यमान हुई पुरुष के दर्शन कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि पत्नी के साथ एकांत में स्थित व्यक्ति को देखना अत्यंत पाप का भागी होना है। इस दोष के कारण कालसूत्र नामक नरक की प्राप्ति होती है। तो बोले गणेश जी अपना उनको सुनाने लग गए वृतांत। द्विज श्रेष्ठ, यदि उस नरक में अल्पकाल ही रहना पड़े, अल्पकाल मतलब कम समय में अगर रहना पड़े तब भी कुछ ठीक रहे, परंतु वहाँ पहुँचने वाला पापी तो जब तक विश्व में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति रहती है तब तक उसे उसी नरक में पड़ा रहना होता है, परंतु यह फल उस स्थिति में और भी दृढ़ हो जाता है जब वह अपने पिता, गुरु अथवा स्वामी आदि की ओर देखता है, तब अधिक पतित हो उठता है। ऐसा पुरुष अपने 7 जन्म पर्यंत स्त्री से विच्छेद न करने के लिए बाध्य रहता है। यदि तथ्य बहुत चर्चित हो जाता है तो लोग उसे और पापी कहने लगते हैं। हे द्विज, यह ऐसे पाप हैं जिनके कारण प्राणी को चंद्र सूर्य की स्थिति रहने तक नरक में निवास करना होता है। विशेषकर जो अप गुरुजनों आदि के रहस्य स्थान में बिना आज्ञा जाता है उसे वही पाप अधिक दुखदायी होते हैं। गणेश्वर के यह वचन सुनकर भृंगु नंदन को हंसी आ गई और क्रोध दोनों हुए। वह कुछ गंभीर एवं निष्ठुर वचन कहने लगे। गणेश्वर, तुम्हारे द्वारा तो आज मैं अत्यंत अद्भुत और अपूर्व वचन सुन रहा हूँ। पाप की ऐसी परिभाषा तो मैंने कभी भी नहीं सुनी। हे भ्राता, काम विकार का दोष हो चाहे न हो, किंतु शिशुतुल्य व्यक्ति जिसे कभी कोई विकार व्याप्त नहीं करता उसे कभी कोई दोष नहीं लगता। फिर भी यदि कोई पाप होगा तो भी उससे मैं ही तो प्रभावित होऊंगा, आपका उसमें क्या प्रयोजन हो सकता है, इसलिए मुझे तुरंत ही प्रभु की अंतापुर में जाने दो, रोको मत। गणेश्वर बोले, मुनिनाथ, जो पुरुष अज्ञानंधकार से आच्छन्न होता है उसे ज्ञानी पुरुषों के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। यद्यपि आप में भी ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ विशिष्ट ज्ञान की संपन्नता है, तो मुझ मंदमति वाले का भी निवेदन मानने की कृपा करें। इस प्रकार से गणेश जी कथा अपनी सुना रहे थे कि कैसे दर्शन करना चाहिए, क्या करना चाहिए।
1: तो राजेंद्र जी, ये तो क्योंकि हप गणेश जी ये कहने वाले कि हे मुनिनाथ, पर मुनिनाथ की ओर बढ़ने से पहले
0: हाँ,
1: क्यों ना हम
0: एक सुंदर सा गणेश जी का भजन चला देते हैं।

0: आए गजानन गौरा जी की अंगना, इसका आप मतलब समझते हैं संडर जी क्या मतलब हुआ? गजानन आए, गणेश जी आए गौरा जी की अंगना,
1: गौरा जी उसकी माता है, गजानन की माता है,
0: और आए आंगन में,
1: और लाए अपने आंगन में गणेश जैसा पुत्र।
0: हाँ
1: मैं समझ रही हूँ,
0: बहुत समझती,
1: इतनी ना समझ नहीं हूँ।
0: तो बढ़ते हैं आगे, क्यों नहीं समझदारी से काम लिया हुआ, क्यों ना आगे बढ़ाया जाए।
2: अच्छा
0: तो चलो बढ़ते हैं फिर
2: वृतांत के ओर बढ़ेंगे।
0: हे मुनिनाथ, निर्गुण एवं निर्लिप्त पुरुष में शक्तियों का अभाव रहता है, किंतु जब उसे सृजन की इच्छा होती है तब वह स्वयं ही शक्ति में आश्रय लेकर सगुण हो जाता है। हे महामुनि, संसार में उत्पन्न समस्त देहधारी भोग के योग्य एवं प्रकृति को केवल भगवान श्री कृष्ण ही है। प्राकृत यानी प्राकृतिक रूप से, जैसे
2: प्राकृतिक यानी कि नेचुरल से बोल देना,
0: नेचुरल या
2: नेचुरल,
0: उनके दर्शन भी तुरंत ही नहीं हो जाते। उस समय गणेश जी ने परशुराम को रुकने के लिए कहते हुए अनेक युक्तियां प्रस्तुत की, परंतु परशुराम जी तो भीतर जाने के लिए ऐसे उतावले हो रहे थे जैसे सैंड्रा जी इंडिया जाने के लिए हो रही है, तो उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते थे। इसलिए गणेश्वर की बात अनसुनी करके भीतर प्रविष्ट होने का प्रयत्न किया, यह देखकर गणेश जी ने उन्हें पुनः रोका। परशुराम बोले, अब तुम बिना कुछ बाधा डाले द्वार के मध्य से हट जाओ और मुझे जाने दो, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। देखो अभी तुम बालक हो, तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, तुम इससे भी अनजान हो कि मुझ में कितनी शक्ति है। तो गणेश जी बोले, आप कैसे भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा जब तक मुझे माता पिता की इस विषय में कोई आदेश नहीं मिलता, तब तक आपको यहीं रोके रखना मेरा कर्तव्य है। यदि यहाँ नहीं रुकना चाहते हो तो लौट जाओ, बाद में दर्शन करने आ जाना।
2: ऐसा किया गणेश जी ने और परशुराम जी के साथ।
0: हाँ, गणेश जी ने परशुराम जी को रोक के रखा ना वहाँ गेट पे।
2: जी,
0: परशुराम ने इसे अपना अपमान समझा, इसलिए गणेश्वर को धक्का देकर भीतर जाने लगी। तभी गणेश जी ने उनको पकड़कर पीछे की ओर धकेल दिया। इससे परशुराम अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने प्रहार करने के लिए परशु को संभाला, निकाला परशु। तभी वहाँ स्वामी कार्तिकेय जी आ गई। उन्होंने कहा, मुनिवर यह क्या कर रहे हो, गणेश्वर तुम्हारे गुरु भगवान शंकर का पुत्र है, इसलिए गुरु ही समान है। यदि तुम इसका वध कर बैठते तो क्या शिवजी की प्रसन्नता प्राप्त कर सकोगे, यानी शिवजी की और पार्वती जी की, शिव एंड शिवा। परशुराम ने फरसा हाथ से फेंक दिया और बोले, मुझे वहाँ जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे मूढ़ बालक, मैं अब तक तुझे गुरुपुत्र का सम्मान देता रहा हूँ, किंतु एक तो है कि अपना हट ही नहीं छोड़ना चाहता। गणेश बोली, मुनिनाथ इस समय आप भीतर नहीं जा सकते, इस क्रोधावस्था में तो तुम्हें शिव शिवा के समक्ष जाने का अधिकार भी नहीं। देखो इस प्रकार वहाँ जाने से अनिष्ट की भी संभावना हो सकती है।
2: तो क्यों ना हम एक पहले गीत आगे सुन लेते हैं राजेंद्र जी।
0: हाँ जरूर, तो आगे बढ़ते हैं। मेरे विचार में तो तुम्हारा इस समय यहाँ से लौट जाना ही श्रेयकर होगा, तो बढ़ते हैं गीत की ओर,
2: क्योंकि अब तो लौटना उसे परशुराम जी को लौटना पड़ेगा
0: कि नहीं पड़ेगा
2: ये तो बाद में पता चलेगा,
0: ये तो चलेगा कुछ देर में पता।

0: रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, तो गणपति थे रिद्धि सिद्धि के दाता हैं ही, तो क्यों ना संजय जी हम आगे की तरफ तरफ बढ़े।
1: जरूर वृतांत आगे बढ़ाना है, और वृतांत जो हम सबके आज का विषय जो रखा गया है कि गणेश जी का, गणेश भगवान को क्यों और एक दंत कहा जाता है।
0: हाँ।
1: तो अभी तो हम सब वहां पहुंचा ही नहीं।
0: हाँ, तो वहीं पहुंचने का चल रहा है, परंतु परशुराम मानते ही न थे। जैसे उनको वहां पर रोका, वो नहीं मानते थे। उन्होंने क्रोध पूर्वक गजानन को धक्का देकर हटाया, उसके फलस्वरूप गजानन गिर पड़े और शीघ्र ही संभल कर उठ बैठे। उन्होंने फिर भी अपने आप को क्रोध रहित और शांत बनाए रखा तथा परशुराम को पुनः रोक कर कहा, मुनिवर भलाई इसी में है कि तुम तुरंत यहाँ से लौट जाओ। हे प्रभु, बिना परमेश्वर शिव की आज्ञा के उनके अंतापुर में प्रवेश करने की आप में क्या शक्ति है? आप मेरे पिता के शिष्य होने के संबंध में मेरे भाई होते हैं और इस समय अतिथि भी हैं, इसलिए आपकी यह हठधर्मी सहन कर रहा हूँ, अन्यथा नहाय हम कार्तिवीरस्य भूपास्ते श्रद्ध जन्वता अतो विप्रान ज्ञानासी माम चा विश्वेश्वरम जमनम। मैं कार्तिवीर्य नहीं हूँ और न क्षुद्र जंतु रूप राजाओं का समूह ही हूँ जिन्हें आपने मार डाला था। हे विप्र, क्या तुम नहीं जानते कि मैं विश्वेश्वर भगवान शंकर का पुत्र हूँ? हे विप्र, अतिथि क्षण भर ठहरो और युद्ध से निवृत्त हो। क्षण भर व्यक्ति होने पर मैं तुम्हारे साथ उन परमपिता के समीप चलूँगा। गणेश्वर के वचन सुनकर परशुराम अट्टहास करने लगे और तब भगवान शंकर का ध्यान करके पुनः अस्त्र प्रहार करने का विचार किया। तभी गणेश जी ने धर्म को साक्षी करके योग विधि के द्वारा अपनी सूंड को करोड़ों योजन लंबी करके परशुराम जी को उनमें लपेट लिया और फिर उन्हें चारों ओर घुमाने लगे।
1: तो राजेंद्र जी, इसे थोड़ा से और सरनामी में बताओ।
0: हाँ, सरनामी में ये है कि जब गणेश जी वो नहीं माने, परशुराम जी न माने ला,
1: हाँ,
0: तो फिर गणेश जी अपनी सूंड को लंबी करे।
1: सूंड माने?
0: सूंड मतलब जो
2: स्लरफ,
0: जो हाथी की सूंड होता है।
1: हाँ,
2: स्लरफ।
1: हाँ जी,
0: उसको लंबी करके और फिर परशुराम जी को लपेटे उसमें,
1: ऐसा,
0: और फिर वो घुमाए चारों तरफ, इधर हाँ, उधर उधर ऐसे घुमाए उसको। तो फिर परशुराम जी, अब परशुराम निरुपाय थे, अब परशुराम के पास कोई उपाय नहीं था, वो फंस चुके थे उनमें।
1: तो चलो एक पहले गीत के ओर, फिर ये वृतांत आगे बढ़ाया जाएगा।
0: हाँ, पहले गीत की ओर बढ़ते।

0: सुन लो बिनती नाथ हमारी। और इसके बाद बिनती तो सुन ही रहे हैं नाथ सबकी, तो क्यों ना अब हमारा समय हो गया है। किस चीज का समय हो गया?
1: न्यूज और कमर्शियल का।
0: कमर्शियल
1: तो हम
0: कमर्शियल
1: सब न्यूज और कमर्शियल के, और फिर उसके बाद में हम सब आ जाएंगे आपके साथ। जरूर सुनते रहना
0: पावन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को फिर से कार्यक्रम की ओर लौटने के लिए प्रस्तुत हो गए हैं। बढ़ते आगे की ओर कि कैसे उस समय क्या रहा, तब फिर क्या हुआ। गणेश्वर के वचन सुनकर परशुराम हंसने लगे और बोलने लगे कि अब परशुराम निरुपाय थे, उनके पास कोई उपाय नहीं था। उनका क्रोध न जाने कहाँ लुप्त हो गया। जो वो गुस्सा कर रहे थे वो सब जब गणेश जी ने लपेटा सूंट में तो उनका गुस्सा खत्म। मान
1: गुस्सा खत्म
0: खत्म। हाँ, ऐसा कैसे लपेटा कि गुस्सा खत्म हो गया।
1: और राजेंद्र जी जो कार्यक्रम को आगे ले जाने वाले, क्योंकि अभी तक तो जो हमारा आज का विषय है उसके बारे में आप कुछ कहे नहीं राजेंद्र जी।
0: हाँ,
1: तो धीरे धीरे हम सब उस ओर बढ़ते हैं।
0: उस ओर बढ़ते हैं। योगी राज गणेश्वर जी की सूंड में लिपट कर चक्र के समान घूमते हुए परशुराम स्तंभित और असहाय हो गए थे। उनकी समझ में ना आया कि वह सब क्या और कैसे हो रहा है। अनंत शक्ति निधान गणेश्वर ने परशुराम जी को सप्तद्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सिंधु तथा भूलोक, भूलोक जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक और शंभुलोक के दर्शन कराए और फिर गहन समुद्र में फेंक दिया, जहां वे प्राण रक्षार्थ जल में तैरने लगे। प्राण रक्षार्थ का मतलब होता है कि गणेश जी ने जैसे उनको सूंड में पकड़ा, लंबी सूंड करी, तो वो सब जगह का दर्शन कर लिए उन्होंने और फिर समुद्र में फेंका। तो फिर जब फेंक दिया समुद्र में तो परशुराम जी अपनी प्राणों की रक्षा के लिए तैरने लग गए पानी में, कहीं किनारा आ जाए। यह देखकर गणेश्वर ने उन्हें पुनः अपनी सूंड में लपेट कर घुमाया और भगवान विष्णु के बैकुंठ तथा भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम के दर्शन कराए। वहाँ परशुराम ने राशेश्वरी श्री राधा जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। इस प्रकार जमदग्नि ने परशुराम श्री गणेश जी की सूंड में घूमते हुए अंत में पृथ्वी की अडक में आ गिरे, पृथ्वी पर गिर गए और उस समय उनको चेत हो गया तथा गणेश्वर कृत स्तंभन से भी वे मुक्त हो गए। तभी उन्होंने जगत गुरु शंकर प्रदत्त भगवान श्री कृष्ण के देव दुर्लभ स्त्रोत और कवच का स्मरण किया तथा समस्त शक्ति से संपन्न होकर अपने परशु से उन्होंने समस्त विघ्न नाशक गणाधिराज पर प्रहार कर दिया, किंतु गणराज ने अपने पूज्य पिता के अमोघ अस्त्र का सम्मान करने की दृष्टि से उसे अपनी ही बाएं दांत से पकड़ लिया, जिसके फलस्वरूप उस तेजस्वी परशु ने गणेश जी का दांत मूल सहित काट दिया और वह परशु भृगुनंदन के हाथ में पुनः जा पहुँचा। परशुराम जी ने अपना परशु फेंका था तो गणेश जी ने उसका सम्मान किया कि हमारे पिता का है, दिया हुआ गणेश उनको, तो कोई बात नहीं, अपने दांत पे रोक दिया। तो दांत से रोका तो दांत जड़ से ही कट गया और फिर वो परशु वापस अपने परशुराम जी के हाथ में चले गया। गणेश्वर का दांत टूटते ही अत्यंत भयंकर शब्द हुआ, धरती आकाश के साथ समस्त दिशाएँ कांप उठी, पर्वत हिल गई और समुद्र में ज्वार आ गया। तो गणेश्वर के मुख में रक्त का फटवारा छूट निकला, लोहित धार के साथ टूटा हुआ दांत धरती पर आ गिरा। क्यों ना एक सुंदर सा गीत चलाएं और इसके बाद आगे बढ़ें।